ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 और 29 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ होता हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबों का आज का दिन शुभ हो, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।
2: संसार में आज तक ऐसी चीज नहीं बनी जिसको लेकर अहंकार माना जाए। यदि कोई समझता है कि उसके पास बहुत संपत्ति है, अगाध विद्वता है, बहुत शक्ति है और इनके लिए अहंकार में चूर रहता है, तो यह उसका प्रमाद है। उसे अपने चारों ओर खुली आंखों से देखना चाहिए, तब उसे बोध होगा कि उससे अधिक धनवान, विद्वान और शक्तिवान ढेर सारे लोग हैं, जिनकी तुलना में वह धूल कण के बराबर भी नहीं है। कुछ व्यक्ति छोटी से छोटी उपलब्धियों से ही गुमान से भर जाते हैं, अपने आगे सबको छोटा और हे मानने लगते हैं। कई लोग छोटा पद पाकर भी अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें गुमान होता है कि वे बड़े पदधारी हैं, उनके सामने कोई नहीं है, सभी तुच्छ हैं। अदना सा पद ही उन्हें मदांध बना देता है, उनका विवेक समाप्त हो जाता है, उनका सोच असंतुलन का शिकार हो जाता है। मनुष्य जब अपना विवेक खो देता है तो उसके क्रिया कार्य प्रणाली उसका व्यवहार प्रभावित होता है। विवेकवान मनुष्य अपने विवेक से ही अपने क्रियाकलापों का नियमन करता है। विवेक उनके आचरण को अनुशासित करता है, यही उसे विशिष्ट भी बनाता है। महान नाटककार एवं कवि शेक्सपियर ने कहा है, अपने विवेक को अपना शिक्षक बनाओ। वस्तुतः विवेक ऐसा शिक्षक है जो मनुष्य को कभी गलत मार्ग पर चलने की इजाजत नहीं देता। यह मानकर चलना चाहिए कि कोई भी काम न तो छोटा होता है न ही बड़ा। कोई किसी काम को किस प्रकार करता है इस पर उसकी छोटाई बड़ाई निर्भर करती है। कोई बड़े काम को छोटे ढंग से करके उसकी और अपनी गरिमा गिरा सकता है और दूसरा छोटे काम को ऊंचे ढंग से करके उसे महनी बना सकता है। उस व्यक्ति का बड़ा या छोटा होना काम करने वाले के ढंग पर निर्भर करता है, इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी छोटा बड़ा बनता है। सबसे पहले अहंकारी आदमी का विवेक मर जाता है। अहंकार के कारण उसका औचित्य बोध समाप्त हो जाता है, यह उसके विनाश की घड़ी होती है। कविवर दिनकर ने लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक का नाश सारे गुण धर्मों का विनाश कर देता है, उसमें अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं रह जाता है। वह वही काम करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, उसकी विनम्रता समाप्त हो जाती है, उसमें अवसर के औचित्य का बोध नहीं रह जाता है। इसे रूसी इतिहास के एक प्रसंग से समझा जा सकता है। रूस के एक राजा थे अलेक्जेंडर। वे अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति की जानकारी तथा अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने निकल जाया करते थे। इसी क्रम में वे घूमते घूमते एक नगर पहुंचे। वे वहां के रास्ते से अपरिचित थे। रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की खोज में आगे बढ़े। उन्हें सरकारी वर्दी में लैस एक हवलदार मिला। राजा ने उससे पूछा, महाशय अमुक स्थान पर जाने का कौन सा मार्ग है? हवलदार रोब में बोला, मूर्ख तू देखता नहीं, मैं सरकारी अफसर हूं, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चलो आगे बढ़ो, किसी और से पूछो। राजा ने विनम्र भाव से पूछा, महाशय यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो इसमें हर्ज क्या है? वैसे मैं किसी से पूछ लूंगा, मगर कृपा कर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार और भी अकड़ा और बोला, अंधा है क्या? मेरी वर्दी देखकर भी नहीं पहचानता कि मैं कौन

0: राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। नहीं, उससे ऊंचा, हवलदार ने कहा। तब क्या नायक हैं? राजा ने पूछा। उससे भी ऊंचा, हवलदार बोला। हवलदार हैं? राजा ने पूछा। हवलदार ने कहा, हां, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं, पर यह तो बता कि इतनी पूछताछ करने का क्या कारण है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की अखर थोड़ी कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार, तब क्या आप हवलदार हैं? राजा, उससे भी ऊंचा। हवलदार, कप्तान? राजा, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। उसने विस्मित भाव से पूछा, तब तो आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा, सादे वस्त्र में अपने राजा अलेक्जेंडर सामने खड़े हैं। वो गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैरों पर गिर गया और रोते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे समझाने के भाव से कहा, भाई, तुम पद की दृष्टि से कुछ भी हो, पर व्यवहार की कसौटी पर बहुत नीचे हो। जो जितना ही नीचा होता है उसमें उतना अहंकार भी होता है, वो उतना ही अकड़ता है। यदि ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील और नम्र बनो, अपनी ऐंठ कम करो, क्योंकि तुम जनता के सेवक हो, इसलिए तुम्हारा तो ये विशेष दायित्व है। इस प्रसंग से ये बोध होता है कि मानवीय गरिमा की सबसे बड़ी कसौटी विनम्रता और अहंकारहीनता है। इस कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाले मनुष्य का जीवन असफल और व्यर्थ हो जाता है। विनम्रता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस गुण से संपन्न व्यक्ति के कठिन काम सहज ही पूरे हो जाते हैं। उसकी बातों का, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पड़े बिना नहीं रहता। यह मनुष्य के आचरण का सर्वोत्तम गुण है। विनम्र मनुष्य में अधिक सृजनात्मक क्षमता होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति के मित्र तो कम होते ही हैं, शत्रु भी नित्य बनते हैं। अहंकारी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका नाश तो होता ही है, नए गुण भी नहीं आते। इसलिए विवेकवान व्यक्ति इस तथ्य को समझते हुए अहंकार को अपने पास फटकने भी नहीं देता।
1: अभी हमने चिंतन से आत्मावलोकन किया। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:13 और 23 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि योग और चेतना के प्रथम गुरु अर्थात आदि देव हैं। संसार के कल्याण के लिए विष को कंठ में धारण करना यह सिखाता है कि जीवन के दुखों और कड़वाहट को पचाकर ही शांति मिलती है। शिव सब कुछ है और कुछ नहीं के बीच एक संतुलन है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।

शिव की महिमा अनंत, अगाध और शब्दों से परे है। वे आदि भी हैं और अंत भी, संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। शिव का अर्थ ही कल्याण है, जो मौन और ध्यान का प्रतीक है।

0: जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से गंदा नहीं होता, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से विचलित या माया से अशुद्ध नहीं होता। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 47।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूं, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7:00 का समय होगा लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्य धारा। 7:30 पर आप सुन सकेंगे गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। दिन के 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता भी, विषय है प्रेमचंद साहित्य के सौदागर नहीं थे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नवीन कुमार। दिन के 11:00 आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। एक बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे

विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 3 बजे आप सुनेंगे पुनः विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को और 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी, शाम के 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मॉर्निंग मेलोडी, 5:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती बारी और 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। आज की चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में बच्चों के सेहत का रखे ख्याल और रोगों से बचाव के उपाय भी आप जानेंगे। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6:55 पर आप सुनेंगे 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जानकार और 7:30 पर आप सुनेंगे खेल पत्रिका कार्यक्रम खेलेंगे सांस से। 7:45 पर आप सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स और 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

8:15 पर आप सुनेंगे फरफांसी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पोर्टलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों का हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीकांता। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर हमारे स्टूडियो से।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् पारितम्।

かっけんま

0: अभी आप सुन रहे थे गोविंद सिंह और साथियों को। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे विजय कुमार सिंह और साथियों को, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आइए सुनते हैं गणेश वंदना विजय कुमार सिंह और साथियों की आवाज में।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुष्कर।

0: कुमार पुष्प की कविताएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं पुष्कर कुमार पुष्प आज आप लोगों के लिए कुछ गजलें, कुछ शेर, कुछ मतले और एक हिंदी कविता लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। एक मतले एक शेर देखिए कि ये तहत में, हर दफे हर बार देखो घर बदलती है, हर दफे हर बार देखो घर बदलती है, बेवफा है मौत पल पल सर बदलती है, हर दफे हर बार देखो घर बदलती है, बेवफा है मौत पल पल सर बदलती है, है यहाँ किसका गुजारा एक कपड़े में, है यहाँ किसका गुजारा एक कपड़े में, रूह भी तो एक दिन चादर बदलती है, रूह भी तो एक दिन चादर बदलती है। एक मतलब एक शेर और देखे तरन्नुम में,

एक हिंदी कविता आखिरी में जाते जाते सुनाना चाहता हूं, सुन लें। शब्दों से और भावनाओं से युद्ध कवि का हमेशा होता है, मैंने उसी को पिरोने की कोशिश की है, सुने। काव्य रण में सत्य जिसका गौण है, काव्य रण में सत्य जिसका गौण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। काव्य रण में सत्य जिसका गौण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। भावना का युद्ध अद्भुत है छिड़ा, भावना का युद्ध अद्भुत है छिड़ा, सव्यसाची अक्षरों से है भिड़ा। भावना का युद्ध अद्भुत है छिड़ा, सव्यसाची

0: जनों से स्वर स्वयं ही हट गया, शिल्प का जो रच रहा त्रिकोण है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है, कृष्ण वह व्याकुल धनुर्धर कौन है। नमस्कार श्रोताओं,
1: अभी आप सुन रहे थे पुष्कर कुमार पुष्प रचित कविताओं को। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत।

0: अभी आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम गीत संगीत में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अभिजीत के गाए गीतों को, जिसे हमने लिया है एल्बम तेरे बिन से।
2: कुछ तो कहो

संगीतकार सचिन देवबर्मन तथा ओपी नैयर को रफी साहब की आवाज बहुत ही रास आई। उन्होंने रफी से गवाना आरंभ किया। निराले अंदाज में रफी आशा की जोड़ी का काफी प्रयोग किया गया। उनकी खनकती धुनिया और आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती है। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफी को बहुत ख्याति मिली। फिर वे रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफी साहब बन गए। दिलीप कुमार, भरत भूषण और देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वाले कलाकारों की सूची बढ़ती गई। समी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र आदि कलाकारों के लिए रफी साहब की आवाज पृष्ठभूमि बनकर गूंजने लगी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये इयररिंग दिखाना।
2: गया तेरा प्राइस मनी।
1: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
3: आते समय कर लिया मोबाइल से।
1: कहाँ?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
1: हाँ,
3: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स,
1: नो ब्रोकरेज,
3: नो हिडन फीस।
1: मान गए, आपको नहीं।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आपको बताते चले कि मोहम्मद रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और कई बार उन्हें नॉमिनेट भी किया गया इसके लिए। साथ ही उन्हें 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी साहब ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। इसके लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। साथ ही जन्मदिन है अभिनेत्री मुमताज का, उन्हें भी हम विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बधाइयां देते हैं। और रात को 9:30 पर आप आज के फनकार ये कार्यक्रम सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेत्री मुमताज पर। आलेख व स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत कार्यक्रम चित्रलोक की अगली प्रस्तुति। चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

रॉक स्टार फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान और सुजैन डी मैलो की आवाजों में अगला गीत। इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। कुछ लव जैसा इस फिल्म का गीत, प्रीतम ने इस गीत का संगीत बनाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और सुनिधि चौहान अनुपम आमोद के स्वरों में ये गीत है।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले से। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत की रचना की है, प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। गायकी की दुनिया का एक सितारा जिसकी शीरी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजती है, मोहम्मद रफी नफरतों और जुल्मतों से भरी इस दुनिया में प्यार

0: आवाज की दुनिया का एक फरिश्ता, एक बेहतरीन शख्स और एक महान कलाकार। समझ नहीं आता मोहम्मद रफी पर बातें कहां से शुरू की जाएं और कहां खत्म की जाए।
1: कि तुझे नगमों की जान अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते।
0: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार नौशाद।
1: सुनी सबने मोहब्बत की जबां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज में तेरी।

0: 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। उन दिनों में उनके गांव में एक फकीर होता था जिसकी आवाज ने रफी को गाने की प्रेरणा दी। बाद में मोहम्मद रफी का परिवार लाहौर चला आया। यहां उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से संगीत की तालीम ली थी।
1: लाहौर में कुंदनलाल सहगल का एक कंसर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई और आयोजन रुक गया। सहगल ने कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी वो नहीं गाएंगे। 13 बरस के मोहम्मद रफी इस आयोजन में अपने रिश्तेदार के साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रफी गाना गाकर जनता को शांत कर सकते हैं। इस तरह से मोहम्मद रफी ने पहली बार मंच पर गाया। फिल्मों में पहली बार गाने का मौका संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया सन 1942 में। फिल्म थी कुल बलोच।
2: तेरी याद ने
1: सन 1946 मोहम्मद रफी ने मुंबई आने का फैसला किया। यहां संगीतकार नौशाद ने उन्हें सबसे पहले फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। सन 1946 में फिल्म शाहजहां में कुंदनलाल सहगल की आवाज के पीछे मोहम्मद रफी ने कोरस में ये गाना गाया।

0: शुरुआती संघर्ष के बाद मोहम्मद रफी को पहला बड़ा मौका संगीतकार नौशाद ने दिया। फिल्म थी अनमोल घड़ी।
1: तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक।
0: इसके बाद 1948 में फिल्म मेला के इस गाने से मोहम्मद रफी को काफी शोहरत मिली।

0: सन 1949 में आया दुलारी फिल्म का ये गाना।
1: सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
0: मोहम्मद रफी की कामयाबी का कारवां सन 1951 से शुरू होता है। फिल्म बैजू बावरा।

0: मोहम्मद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीतकार नौशाद ने उनकी याद में विविध भारती से ये बात कही थी।
1: गायकी था हुस्न फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है।

रफी इतने पक्के सुरों वाले गायक थे कि गीत चाहे शास्त्रीय हो या पश्चिमी, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मोहम्मद रफी और नौशाद की जोड़ी ने फिल्म संगीत के इतिहास के कुछ बेमिसाल और कालजयी गीत दिए हैं। सन 1960, फिल्म कोहिनूर, राग हमीर पर आधारित।

0: मोहम्मद रफी ने मस्ती भरे गाने भी खूब गाए। चाइना टाउन
1: बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा।
0: जंगली
2: आई आईया करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।
0: प्रिंस
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो ना जाए।
4: मतलब मेरी आवाज है, मैं समझता हूँ रफी साहब ना होते तो मैं बड़ा मैं इनकम्प्लीट था। उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो।
0: विविध भारती के संग्रहालय से जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर।
4: उन्होंने मुझे स्टाइल दिया जैसे मैं समझता हूँ कि रफी को स्टाइल ओपी नहीं ने दिया। रफी साहब इज अ वेरी गुड सिंगर और क्या उनकी पिच है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो नैयर ने दिया। हम वो खींचते थे आवाज एंड रफी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली और ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। मैं पेरिस में था और उन्होंने गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे जब मैं वापस आया तो मैं रफी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, वो शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, वो शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले इन करके गिर जाएगा फिर दो रोटियां खाएगा, तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता।

रफी ने जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजलें, नातिया कलाम सबको अपनी आवाज दी। ये है उनका एक गैर फिल्मी

दशक बदलते रहे, युग बदलते रहे, पर रफी की आवाज का करिश्मा खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज लोगों के दिलों पर साल दर साल राज करती रही। आइए दशक दर दशक रफी की यात्रा पर एक नजर। 50 का दशक।

0: किया,
1: उनको खुश करना हो ना हमको। तो लक्ष्मी जी हम दोनों क्या करते थे,
2: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारे लाल
1: घर से चाय लेके आते थे, तो उनकी चाय जो बनती थी वो किसको देते नहीं थे। अच्छा। वो खुद पीते थे। हाँ। लेकिन वो थर्मास के अंदर आती थी, दो थर्मास। लेकिन वो कैसी चाय बनती थी मैं बताऊं आपको। दो सिर दूध के एक सिर बनाते थे जिसमें बादाम और पिस्ता डालते थे, और उसके बाद में चाय की पत्ती, वो खास उनकी पत्ती थी, और वो चाय लेके आते। वो अगर आप एक मिनट रखेंगे तो मलाई इतनी जम जाती। तो हम क्या करते थे, क्योंकि हमको खुश करना है रफी साहब को, तो खुश करने के लिए हम उनको बोलेंगे थोड़ी चाय मिल जाएगी। तो वो कैसा करते थे ना, जैसे हम बोलते ना कि छोटा बच्चा अगर है तो अगर मस्ती कर रहा है कुछ, अरे भाई उसको कुछ चॉकलेट दे ना, चॉकलेट, तो कैसे बोलने का स्टाइल होता है ना। तो उनका होता जहीर था उनका साला, अरे जहीर चाय दो ना, चाय इनको, बच्चे लोग है ना, चाय पिलाओ। तो बोलने का एक ढंग होता था, और चाय पीने के बाद फिर हमको बोलना चाहिए वाह वाह मजा आ गई। तो देखिये ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर उनको एक शौक था सीटी बजाने का,
0: अच्छा
1: विसल, उनको बोलेंगे भाई गाना है एंड में आपको विसल बजाना है, तो पूरा गाना वेट करते हो, गाना खत्म हो और मैं जाके विसल बजाऊं। डड डडा डड डारा दीवाना ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैं अभी अभी के अभी ये सब चीजें होती ना, ये उनमें बहुत थी। और उसके एंड में वो जो बोलते ना उसमें पीस था ये हमने यूज किया था टोटा, तो उसमें आप देखिए डा डा डा दी धक धीन, तो उसमें उन्होंने विसल बजाई है।

0: है।
1: मेरी उनसे पहली मुलाकात 1947 में दिल्ली में हुई, जब भारत आजाद हुआ।
2: संगीतकार रवि विविध भारती के संग्रहालय से।
1: भारत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था दिल्ली में, जश्न जमहूरियत, आजादी का जश्न मनाया, और उसमें दो सिंगर्स मुकेश साहब और रफी साहब को बॉम्बे से बुलाया गाने के लिए।

वतन आजाद। मुझे पता लगा मैं रफी साहब को बड़ा चाहने वाला था शुरू से, क्योंकि जब मैं गाने सुनता था उनके, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की उम्र कहानी या और बहुत से गाने उन्होंने गाए फिल्मों में, तो मैं बड़ा उनका फैन था। तो मैंने कहा मैं रफी साहब को जरूर मिलूंगा। तो मैंने पता लगाया कि वो फतेहपुरी दिल्ली में कॉरोनेशन होटल में ठहरे हैं। मैं उनसे मिलने गया, बात की, मैंने उनसे मेरे दोस्तों से कहलवाया मैंने कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, नोटेशन सीखनी पड़ेगी, ये वो सब सारी बातें बताई। खैर हम चले आए वहाँ से उनसे मिलकर, उनके भाई भी साथ में। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे गाने का शौक था, मैं 1950 में बॉम्बे आया। इससे पहले मैं दिल्ली में पोस्ट टेलीग्राफ में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करता था।

तो वहां से बॉम्बे आया। बॉम्बे आकर बड़ा स्ट्रगल का टाइम गुजरा, 2-3 साल 4 साल मुझे फिल्म वचन में पहला चांस मिला। उसमें एक गाना था, एक पैसा दे दे बाबू, तो मैंने रफी साहब से वो गाना गवाया।

प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर राम महेश्वरी, वो एक दिन आए, साहिर साहब बैठे थे यहाँ साथ में, साहिर साहब को सिचुएशन बता रहे थे कि राजकुमार जी फिल्म में मीना कुमारी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ शायरी कहते हैं, तो कुछ दो शेर आप लिख दीजिए, साहिर साहब को बोल दो शेर लिख दीजिए कि वो तरन्नुम में कहें। साहिर साहब लिख कर ले आए, चूले नाजुक होठों को कुछ और नहीं इतना जाम है। मैंने भी अब जब उन्होंने कहा था तरन्नुम की बात करें तो मैंने चूले ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये, इस टाइप की टून बना दी। लेकिन जब मैं धुन बना रहा था तो मुझे एक धुन और याद आई, मेरे दिमाग में आई कि इसकी तो बहुत अच्छी धुन बन सकती है। साहिर साहब इसको अब तरन्नुम में क्यों डाल रहे हैं इसको, हम अगर इसका गाना बनाए तो अच्छा है ना, ये हम शेर व शायरी के हिसाब से तरन्नुम में दो शेर कह दिए, रिकॉर्ड बनेगा फिर उसका। तो मैंने उनको धुन सुनाई साहिर साहब को, बड़े बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा, आने दीजिए डायरेक्टर को, हम बोलते हैं कि गाना रखो उसके शेर की बजाय। राम महेश्वरी साहब आए, उनको सुनाया, बोले नहीं नहीं वो राजकुमार जी के मुंह पे अच्छा नहीं लगेगा गाना, कभी किसी ने दिया नहीं उनको गाना। मैंने कहा देखिए गाना अगर अच्छा है तो कोई भी गाए उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े बेदिली से कहने लगे अच्छा ऐसा करे फिर दो शेर से ज्यादा ना रखिए। साहिर साहब बोले ठीक है, दो शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, सुनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के और आदमी सब सुन रहे थे हर शेर पर, वाह वाह वाह वाह क्या बात, रफी साहब क्या गा रहे थे। गाना खत्म हो गया दो शेर के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की राम महेश्वरी साहब को, क्या महेश्वरी साहब ये क्या इतना अच्छा गाना दो शेर। अब महेश्वरी साहब परेशान हुए तो बाहर जाकर उन्होंने साहिर साहब को फोन लगा रहे थे कि तीसरा शेर भी दे दो कोई है तो। लेकिन साहिर साहब नहीं मिले और गाने में दो ही शेर रह गए।

0: काम है ये।
1: मोहम्मद रफी की खासियत थी अलग अलग अभिनेताओं के हिसाब से गाने में अदायगी को स्वर देना। इसीलिए अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं और उनके मुताबिक रफी की अदायगी बदलती रही। आइए अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज के इस सफर पर एक नजर डालें। दिलीप कुमार।

0: अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज की अदायगी के सफर पर निकले हैं और ये गुरुदत्त की आवाज।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: और जॉनी वॉकर के लिए तो मोहम्मद रफी ने बहुत बेजोड़ अंदाज अपनाया।

0: कर दूंगे पर्दा, पर्दा ना शीशो बे, पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम।
1: कुछ ऐसे गाने आए जिनमें किशोर कुमार पर्दे पर नजर आए, लेकिन प्लेबैक किया मोहम्मद रफी ने। ऐसे ही एक गाने की कहानी संगीतकार ओपी नैयर की जबानी।
2: भाई इसलिए किया कि वो क्लासिकल मूड का गाना था, मन मोरा भावरा, तो वो बड़ा सटपट आया उस समय। तो अपने भाई के पास गए, को भाई प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार साहब, तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे। कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, तुम नैयर साहब से बात करो। हमने बोला ये तो सिर्फ मोहम्मद रफी गाएगा, दूसरा गाएगा नहीं। गाया फिर मोहम्मद रफी साहब ने गाया।

0: एक फिल्म आई थी गंगा मैया पियरी चढ़ई, वो भोजपुरी की पहली फिल्म थी, उसमें एक गाना था सोनवा का पिंजरा में,
1: संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद के आनंद,
0: वो गाना मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। तो इस गाने में खास बात ये है कि रफी साहब हिंदी और उर्दू के अलावा पंजाबी में बोलते थे। ये गाना अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई ठेठ भोजपुरी जानने वाला आदमी है उसने गाना गाया। हर वर्ड का फील, प्रोनाउंसिएशन, जैसे इस गाने में एक भैले शब्द है सोनवा का पिंजरा बंद, और जैसे बंद है बंद भैले हाय राम, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एकदम भोजपुरी जानने वाला आदमी है उसने इस गाने को गाया हुआ।
2: सोनवा के पिंजरा में बंद।

0: बचपन में दिल बहलाने के लिए ही तो गाता था, गुनगुनाता था। उस वक्त तो कभी सोचा भी न था कि मैं फिल्मों में आऊंगा।
1: जाने माने गायक शब्बीर कुमार।
0: मैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज के नाम से अपने शहर बड़ौदा गुजरात में काफी मशहूर हुआ। मुझे स्टेज पर बहुत से प्रोग्राम करने का मौका मिला। उस खुदादाद आवाज का मेरा मतलब है रफी साहब का। मैं शुरू से दीवाना रहा हूँ, शहदाई रहा हूँ। जब भी उनका कोई गीत सुनकर स्कूल या दोस्त यारों की महफिल में गाता गुनगुनाता तो सभी सुनने वाले मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ का बदल कहते। आज भी आवाम मुझ में रफ़ी साहब को पाना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रफ़ी साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और मुझ जैसे कई शब्बीर मिलकर भी एक रफ़ी नहीं बना सकते। तुम

0: मोहम्मद रफी की याद में ये था विशेष फीचर तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। शोध आलेख और संपादन यूनुस खान, स्वर यूनुस खान और ममता सिंह, प्रस्तुति शकील बख्शी।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: Nine, eight, seven, six,

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, बारिश की हल्की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो मन अपने आप ही तरोताजा हो जाता है। इस मौसम की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक,

जैसे दिल को नरम और आराम देती है। संगीत की मीठी धुनें बारिश की ताल से मिलकर जैसे आत्मा को छू लेती हैं। पुराने गीतों की यादें भीगी सामों में और भी गहरे हो जाती हैं। कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो सन्नाटे को भी खूबसूरत बना देते हैं। बूंदों की टपक जैसे किसी धुन पर नृत्य करती हो। इस मौसम में सुनना सिर्फ सुनना नहीं होता, यह भीतर तक महसूस करना होता है। बारिश की ठंडी हवा में संगीत का आनंद और भी बढ़ जाता है। यह वो समय है जब दिल ज्यादा महसूस करता है। आइए आज इस समय को और भी, इस पल को और भी खूबसूरत बनाते हैं गीत संगीत के साथ। आनंद लेते इस गीत का। अब आजें कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की हैं।

इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से जानकारियों की तरफ बढ़ते हैं। आज जानेंगे मौसम का हाल और शहर में हो रहे अनुष्ठान के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे सराफा बाजार के बारे में। मौसम की अगर हम बातचीत करें तो आज तापमान अधिकतम 28.6 डिग्री सेल्सियस होगा और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आज भगवत गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में संध्या 6:30 बजे यानी 6:30 पर। सोना 22 के रेट 1,34,800 रुपये और चांदी प्रति किलो 2,30,000 रुपये होगा। और दोस्तों अब हम अखबार में छपी खबरों के अनुसार जानते हैं देश दुनिया का हाल। सबसे पहले जानते हैं कि हजारीबाग भास्कर क्या कुछ कहता है और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। बहुउद्देशीय भवन में सिर्फ चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र 2.32 करोड़ से बना था। सीमा पर ढाढर नदी के किनारे स्थित अति उग्रवाद प्रभावित भगर पंचायत है, इसमें ग्रामीणों के विकास, स्वरोजगार और महिलाओं की को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट योजना के तहत करीब 2.32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित समेकित विकास केंद्र सह बहुउद्देशीय भवन आज उपयोग के अभाव में खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। अवैध खनन करने वालों को जुर्माना के साथ देनी होगी 10 गुना रॉयल्टी, यह कहना है हजारीबाग भास्कर का। प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब वाहनों से अवैध खनन की सामग्री ले जाने वालों के खिलाफ सख्ती की गई है, पकड़े जाने पर इन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अवैध खनन की रॉयल्टी का 10 गुना देना होगा। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल। सिछुआ स्थित मुखिया जी लाइन होटल के समीप गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान पद्मा थाना क्षेत्र के सिमरकुरहा निवासी उपेंद्र यादव के रूप में की गई। बरही में 1350 की डीएपी खाद बेच रहे थे 2000 में, वीडियो ने वापस दिलाए पैसे। प्रखंड विकास पदाधिकारी बरही ने गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक विक्रेता को औचक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएपी खाद की अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया। महादेव के जयकारों से गूंजा शिवालय, जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी भीड़, यह कहना हजारीबाग भास्कर का। सावन मास के प्रथम दिन गुरुवार को शहर के सभी शिवालयों में और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह होते ही भक्तों का मंदिरों की ओर आना शुरू हुआ जथा और दिन के चढ़ने के साथ भीड़ और बढ़ती गई। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति अधिक रही, वे पूजा अर्चना की थालियां लेकर मंदिरों में पहुंची। सावन के पहले दिन को लेकर भक्तों की खासा उत्साह, गहरा भक्तिभाव दिखा। शहर के ऐतिहासिक बुढ़ा महादेव मंदिर परिसर में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रही। बजरंगबली मंदिर से मूर्ति और घंटी की चोरी। बीती रात अज्ञात अपराधियों ने किरेडारी मुख्यालय स्थित बंगला रोड मैदान स्थित कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण अवस्थित बजरंगबली मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति और घंटी की चोरी कर ली गई है। उक्त बंगला टाण मैदान में वर्षों से रामनवमी पूजा में मेला लगाया जाता रहा है। दोस्तों इस जानकारी के बाद हम सभी मिलकर एक गीत का आनंद लेते हैं। आवाजें शमशान।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद अब हम जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक और एक उपन्यास सम्राट थे। उन्होंने साहित्य को काल्पनिक दुनिया से निकालकर यथार्थवादी और सामाजिक समस्याओं से जोड़ा। उनका जन्म 31 जुलाई को हुआ था वाराणसी के लम्ही गांव में, और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। उनकी कालजयी कहानियां और उपन्यास उन्हें जनमानस तक पहुंचाने और उनके हृदय की गहराइयों से छूकर उन्हें अमरता प्रदान करती है। आइए सुनते हैं एक वार्ता। प्रेमचंद साहित्य के सौदागर नहीं थे। वार्ताकार डॉक्टर नवीन कुमार।
1: प्रेमचंद और गोदान। कुछ लोग अंधेरे में जूठे खाने को तैयार हैं, मगर उजाले में निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं। प्रेमचंद जी जो जीते हैं वही रचते हैं। शरद चंद्र का उपन्यास तकिया भिगोने वाला उपन्यास होता है, मगर प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने पर पाठक को आंख से आंसू तो आता है, मगर वो आंसू आंख में ही छलछला कर रह जाता है और चिंगारी बन जाता है और पाठक को क्रांति के लिए मजबूर करता है। और ऐसे भी झरझराती हुई आंखों के आंसू में वो दर्द नहीं होता है जो डबडबाती हुई आंखों के आंसू में होता है। प्रेमचंद की रचनाओं में हमेशा आध्यात्मवाद नहीं गूंजती है, उनके उपन्यासों में रोटी गूंजती है। और जहां रोटी गूंजती है वहां दुनिया की हर चीज फीकी नजर आती है। आजादी के समय गांधी जी जो काम आंदोलन के जरिए करते थे, प्रेमचंद वही काम लिखकर करते थे। प्रेमचंद से एक बार किसी ने पूछा कि अगर आप

0: आप राजनीति में होते तो किस पार्टी के सदस्य होते? इस पर प्रेमचंद ने कहा, अभी तक देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी जिसका मैं सदस्य हो सकूं। प्रेमचंद का मानना था कि आज भी हिंदू और मुसलमानों की बुनियादी समस्याएं एक ही हैं। प्रेमचंद का मानना था कि बगीचों में जो पेड़ होते हैं उनकी डाली और पत्ती कतरी नहीं जाती, बड़े घरों में तो पौधों को भी बढ़ने की इजाजत नहीं होती है। प्रेमचंद का मानना था कि लेखक जनता का शिक्षक होता है। एक बार बीमारी की हालत में प्रेमचंद गोरकी की शोक सभा के लिए भाषण लिख रहे थे, तब उनकी पत्नी ने कहा, वो कौन हिंदुस्तानी थे? तब प्रेमचंद ने जवाब दिया कि गोरकी इतना बड़ा लेखक था कि उसके बारे में देश या जाति का सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रेमचंद ना गांधीवादी थे, ना मार्क्सवादी थे, ना साम्यवादी, ना ही आध्यात्मवादी। उनका मानना था कि जिस वाद से समाज के सबसे अंतिम कतार के व्यक्ति का भला हो, मैं उसी वाद से प्रभावित हूं। जिस तरह से गांधी राजनीति में किसानों की ताकत को पहचानते थे, उसी तरह से प्रेमचंद साहित्य में किसानों की ताकत को पहचानते थे। प्रेमचंद का मानना था कि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। प्रेमचंद मरने के समय अचानक उनको रात में खून के कय होने लगी, तब पत्नी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, लगता है अब आपका अंतिम समय आ गया है, भगवान का नाम लीजिए। इतना सुनते ही प्रेमचंद उठकर बैठ जाए और बोले, क्या बोली? भगवान का नाम लो। जिसका जीते जी कभी नाम नहीं लिया, उसका मरने के समय भी नाम नहीं लूंगा। प्रेमचंद के गोदान के पात्र होरी के बारे में प्रेमचंद का कथन है कि होरी एक सीमांत किसान है। वह एक सीमांत किसान की सारी अच्छाइयों और बुराइयों को वह प्रतिबिंबित करता है। होरी पुरानी मूल्यों को लेकर नई परिस्थितियों में रच बस नहीं पाता है और धाराशाही हो जाता है। प्रेमचंद का मानना है कि होरी मानवतावादी है। जहां भी उसे अनुभव होता है कि मानवता पर आघात हो रहा है, तो उसकी मानवीय संवेदना चाकू की तरह झन्ना कर तन जाती है। लेकिन उसके ये मूल्य महाजनी दावपेच सामंती शोषण दमन की चुनौती के सामने कारगर साबित नहीं हो पाते, फलतः होरी टूट कर बिखर जाते। होरी एक जड़ चरित्र नहीं है, वह परिस्थितियों के अनुकूल बदल भी सकता है। होरी के चरित्र में सामान्य और विशेष का संश्लिष्ट है। होरी शासन और शोषण के चक्र में उलझकर ही किसान से मजदूर बनता है और लू खाकर चारों खाने चित गिरता है। उपन्यास के शुरू में होरी गर्व से कहता है कि किसानी में जो मर्याद है वह दुनिया के किसी चीज में नहीं, मगर वही होरी उपन्यास के खत्म होते होते अपने ही खेत में महाजनी शोषण का शिकार होकर मजदूर बनने को मजबूर हो जाता है। तब कहता है, मजदूरी करना पाप है थोड़े। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि जमींदार के कारकुन होरी की जमीन छीनने नहीं आते, लेकिन उसकी जमीन छीन जरूर जाती है। सरकार का कचहरी कानून होरी का घर लूटने नहीं आते, लेकिन उसका घर लूट अवश्य जाता है। होरी के दुश्मन बड़े चालाक हैं। वे होरी को कोई ऐसा मौका देना नहीं चाहते जिसमें वह 100 या 50 रुपए जमा कर विरोध पर उतर सके। होरी के साथ सत्ता के साजिश के कारण सब कुछ घटता रहता है और बेचारा होरी सिर्फ भाग्य को कोस कर रह जाता है। वह कहता है कि पूर्व जन्म में जैसा किए हैं वही हम भोग रहे हैं। अजीब बात है कि होरी किसी से टकराता नहीं है, लेकिन फिर भी चारों खाने चित गिरता है। कोई एक आदमी उसका दुश्मन नहीं है, दुश्मन है यह पूरी की पूरी व्यवस्था जो उसे कर्ज और सूद की ढरकी पिलाकर मार देता है। प्रेमचंद कहते हैं, जिस देश के किसानों की फसलें खलिहान से उठकर महाजन के घर चली जाती है, उस देश के सीमांत किसान की नियति तो कृषि के प्रति मोह भंग की तो होगी ही।
1: अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता विषय था।

प्रेमचंद साहित्य के सौदागर नहीं थे। वार्ताकार थे डॉक्टर नवीन कुमार। इस जानकारी के बाद आइए हम सभी मिलकर एक गीत का आनंद लेते हैं।

खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। पेपर लीक रोधी विधेयक पर मुहर, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर गुरुवार को संसद की मुहर लग गई। विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया और पेपर लीक समेत परीक्षाओं में गड़बड़ियों की त्वरित जांच एवं मुकदमे के साथ ही सजा की सख्ती लाने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को ही पारित कर दिया। जेपीएससी पीटी गलत ढंग से पास करने वाला सुमन सौरभ गिरफ्तार। लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी ने 14वीं सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयनित एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईडी ने उसे हजारीबाग पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में रांची के रोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया। रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी 10 कंपनियों पर आयकर का छापा। झारखंड के सबसे बड़े करदाताओं में शामिल तथा देश की प्रमुख निर्माण कंपनियों में शुमार रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़ी 10 कंपनियों से जुड़े 5 ठिकानों पर आयकर विभाग ने गुरुवार को छापेमारी की। ये ठिकाने झारखंड, बिहार और गुरुग्राम में हैं। आयकर विभाग ने 200 अधिकारी और जवान इस छापेमारी से जुटे हैं। जिन ठिकानों पर छापेमारी चल रही उनमें रांची की कचहरी रोड पंचवटी प्लाजा में फ्लैट नंबर 702 स्थित रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय, बिहार के बेगूसराय के कृष्णानगर से जुड़े आवासीय परिसर तथा हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 54 सनसिटी के शॉपिंग आर्केड स्थित कॉरपोरेट कार्यालय आदि शामिल है। मुठभेड़ में प्रिंस खान गिरोह के एक को गोली लगी, यह कहना है दैनिक जागरण का। हजारीबाग जिले के गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा संचालित अपराधी संगठन के एसएस कोयलांचल शांति सेना कुबेर ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने दी। पैरा धावक गागती की स्वर्णिम दौड़, बासिल ने जीता रजत, यह कहना है दैनिक जागरण का। ग्लासगो राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार देर रात भारत ने पैरा एथलेटिक्स में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब दिलीप महातु, काबित और मोहम्मद बासिल ने पुरुषों के 100 मीटर T47 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत जीते। दोनों भारतीय धावकों ने पहले और दूसरे स्थान में रहते हुए इतिहास रच दिया। कर्मियों की कार्यशैली पर भड़की सदर प्रमुख, कार्रवाई की मांग। सदर प्रखंड प्रमुख वीना देवी ने सदर अंचल के राजस्व कर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए सीओ के आवेदन उन्हें सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। सड़क पर जल जमाव और गड्ढों से परेशानी। विष्णुगढ़ कोमिया एनएच पर तैलिक धर्मशाला से करंज मोड़ होते हुए करेगा मोहल्ला जाने वाले गिरोह तक समीप सड़क पर बने गड्ढे को लगातार जल जमाव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी बढ़ गई है। ब्रेक फेल होने से मिनी ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी, खलासी गंभीर। चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार तड़के करीब 4:30 पर ब्रेक फेल होने से एक मिनी ट्रक आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया। हादसे में मिनी ट्रक का उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऊर्जा सचिव से मिले सांसद, रैयतों की उठाई आवाज। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर एनटीपीसी लिमिटेड की कोयला खनन परियोजना से प्रभावित रैयतों और विस्थापित परिवारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इस जानकारी के बाद हम सभी एक गीत का आनंद लेते हैं। आवाजें सुमन कल्याणपुर और मुकेश की हैं।

कार्यक्रम में खबरों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रभात खबर क्या कुछ कहता है और किन खबरों को उन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया। भड़कागांव में पुलिस और प्रिंस खान गिरोह के बीच मुठभेड़ में अपराधी घायल, 5 गिरफ्तार, ये कहना है प्रभात खबर का। भड़कागांव थाना क्षेत्र के आराहरा 13 माइल स्थित TP5 के पास पुलिस और गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सैयद मोहम्मद जीशान के पैर में गोली लगी, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। पायलट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं, नियमों को चुनौती देने की दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस बल द्वारा पायलट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली 3 याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। ये याचिका जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मैटलिक पायलट गन के इस्तेमाल किए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की थी। कोर्ट ने पायलट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोडरमा में कन्हैयालाल कन्फेक्शनर के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी। जीएसटी की टीम ने गुरुवार को कोडरमा के चर्चित मिठाई एवं नमकीन प्रतिष्ठान कन्हैया कन्फेक्शनर के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम करीब 11 वाहनों से जमशेदपुर से कोडरमा पहुंची। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे अलग अलग टीमों ने झंडा चौक स्थित मुख्य प्रतिष्ठान तथा प्रतिष्ठान के संचालक विकास सेठ के गौरी शंकर मोहल्ला वार्ड संख्या 10 स्थित आवास पर एक साथ जांच शुरू कर दी। खबरों में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में SMC गठन में पारदर्शिता पर सवाल। जिले के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12 तक के सफल संचालन में विद्यालय प्रबंधन समिति एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 2026 में नए सिरे से सरकारी और सहायता प्राप्त 2200 से अधिक स्कूलों में

एमसी का गठन शुरू हुआ है। नियम अनुसार पहले अध्यक्ष बने व्यक्ति महिला या पुरुष को दोबारा अध्यक्ष चुनने में कई पेच हैं। वहीं शिक्षक को दोबारा सदस्य बनने के लिए स्कूल के बाकी शिक्षकों का समर्थन जरूरी होगा। NH 33 पर वाहन दुर्घटना में युवक घायल। सिछुआ मुखिया जी लाइन होटल के समीप गुरुवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी पहचान पद्माना थाना क्षेत्र के सिमरकुरा निवासी उपेंद्र यादव के रूप में हुई। जोरदाग विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग में विद्यालय प्रबंधन और विकास समिति पुनर्गठन को लेकर आम सभा हुई। सर्वसम्मति से प्रेम कुमार साहू को समिति का अध्यक्ष और कविता देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, आज 31 जुलाई यानी आज के दिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने और प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी साहब का निधन हुआ। आज के दिन 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी भारतीय सिनेमा के महान और सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक थे। आइए इनके गीत का आनंद हम सभी लेते हैं।

मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इसी गीत के बाद अब हम जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज जानते हैं कि हिंदुस्तान अखबार किन खबरों को प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। देवघर जाने को विशेष बस ट्रेन का संचालन शुरू, यह कहना है हिंदुस्तान अखबार का। पवित्र सावन मास में देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक और दर्शन के लिए हजारीबाग से देवघर बाबा धाम जाने वाले शिव भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक और परिवहन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष श्रावणी मेले को लेकर हजारीबाग से देवघर और सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त बसों और पर्यटन विभाग के कैंपों के जरिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कांवरियों के लिए सेवा शिविर, सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल या वाहन से गुजरने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए नवयुवक कांवरिया संघ मेरू की ओर से गुरुवार से निःशुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना, पवित्र सावन माह के प्रथम तिथि पर बोंगा गांव की कांवरियों के जत्था अभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। सड़क मोहल्ले और कॉलोनियों के नामकरण अब नए नियम से। झारखंड सरकार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पार्षदों और नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सड़कों, रास्तों, मोहल्लों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण और पुनर्नामकरण की नई नियमावली आ गई है। इसका उद्देश्य नामकरण पुनर्नामकरण प्रक्रिया को एक रूप और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए झारखंड नगर पालिका मार्गो मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों का नामकरण एवं क्रमांकन नियमावली 2026 का प्रारूप जारी कर दिया गया है। जेपीएससी विवाद की श्वेता अभय को सामने बैठा पूछताछ, ये कहना है हिंदुस्तान अखबार का। जेपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता और उसके मॉड्स को लेकर गुरुवार को तत्कालीन परीक्षा उपनियंत्रक श्वेता गुप्ता और टीडीपीएल से जुड़े रहे अभय तिवारी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आजीवन सजा काट रहे 26 कैदी होंगे रिहा, यह कहना है हिंदुस्तान अखबार का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। इसमें राज्य के जेलों में आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों की रिहाई की समीक्षा की गई। अंततः

26 की रिहाई पर सहमति दी गई। दोस्तों, हम बातें करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक नामचीन किरदार की, मुमताज, जिनका जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ। वह अपने दौर की सबसे खूबसूरत और कामयाब हीरोइन थी, जिन्होंने कई फिल्में देकर फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवन प्रदान किया। आइए सुनते हैं इन्हीं के अभिनीत फिल्म के गीत, रोटी का गाना, जिसमें मुमताज के साथ साथ राजेश खन्ना प्रमुख रूप से अपने अभिनय में थे। इससे फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

दोस्तों, आज 31 जुलाई, आज जानते हैं कि भारत और विश्व के नजरिए से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के दिन 1998 में सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में के राजधानी कोलंबो में संपन्न हुआ। आज के दिन 2003 में इसराइल और फिलिस्तीन के सुरक्षा मंत्रियों की बैठक यरूशलेम में समाप्त हुई। आज के दिन 2004 में आर्थिक सहयोग मंच

बीमस्टेक का नाम बदलकर बंगत शेष रखा गया। 2006 में उज्बेकिस्तान ने अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटा लेने का आदेश आज ही के दिन 2005 में दिया और आज ही के दिन श्रीलंका में युद्ध विराम समझौता समाप्त हुआ। एलटीटी के साथ संघर्ष में 50 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आज के दिन 2008 में थाईलैंड की अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन शिनावात्रा की पत्नी को कर चोरी मामले में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। और आज के दिन 2012 में प्रोफेसर अशोक सेन को पहले यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स साइंस प्राइज के 9 विजेताओं में से एक विजेता घोषित किया गया। आज के दिन जन्म हुआ 1916 में मोहनलाल सुखाड़िया का, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। आज के दिन जन्म 1907 में दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी का, जो भारत के प्रसिद्ध विद्वान और भाषा वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। और आज के दिन जन्म हुआ प्रेमचंद जी का, जो प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार थे। आज के दिन दोस्तों निधन हुआ 1941 में आशुतोष दास जी का, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक थे। आज के दिन 1940 में अमर शहीद उधम सिंह का निधन हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और आज के दिन 1980 में निधन हुआ था मोहम्मद रफी साहब को, जो भारतीय पार्श्व गायक थे। और साथ ही आज ही 1968 में निधन हुआ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का, जो 20वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन में विशेष योगदान देने वाले विद्वान थे। दोस्तों जाते जाते कियारा आडवाणी की अभिनीत फिल्म कबीर सिंह के गीत को सुनते हैं, क्योंकि आज ही के दिन कियारा आडवाणी जी का जन्म हुआ 31 जुलाई 1991 को।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथियों को, जिसे हमने लिया था फिल्म कबीर सिंह से। और इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से विदा लेने का समय भी हो गया है। तो जाते जाते आज के सुविचार के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर हम खुद को बदलेंगे तो एक दिन पूरा समाज बदलता हुआ नजर आएगा।

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग,
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के खड़ी में दिन के 10:59 और 28 सेकंड्स में हैं। अभी से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। इसके लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार, और फिलहाल मुझे दे इजाजत। नमस्कार।

0: Taranga, taranga.
1: रंग तरंग कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

एक पल इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे, उषा मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका और भूपेंद्र हेमंती की आवाजों में। गुलजार के बोल थे, भूपेंद्र हजारिका की तर्ज थी।

जफर, गोरखपुरी का कलाम आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। एल्बम तस्कीन, छाया गांगुली की आवाज, पयाम सईदी।

आप सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से ये गीत उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। संदेश शांडिल्य की तर्ज थी। संदेश शांडिल्य का लिखा ये गीत था श्रोताओं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के

0: रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

भर के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे पारस मनी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने सजाए हैं मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

0: हर सहारा है।
1: आप सुन रहे थे वापस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रफी को आपने सुना फिल्म दोस्ती में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था श्रोताओ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड

0: कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में इसे गाए मोहम्मद रफी ने। सहेल ध्यानवी की रचना आपने सुनी फिल्म काजल से।

0: जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है और सुरीला सफर कार्यक्रम को आज हमने मोहम्मद रफी की याद और आवाज से सजाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का। आपको लॉग ऑन कर लेना है www.facebook.com/vbsmumbai और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पते पर आप भेज सकते हैं। मोहम्मद रफी की जब बात आती है श्रोताओ, तो सब कुछ जैसे मोहब्बत के फसानों में ढल ही जाता है। उनके जिंदा दिल गीतों को हमने सुना ही नहीं बल्कि एक जिंदगी जी है इन गीतों के साथ। चलिए एक बार फिर हम और आप बन जाते हैं इन गीतों के हम सफर और अब पढ़ देते हैं वो इबारत जो आज हमने फेसबुक पर पोस्ट की है। तो ये कुछ मोहम्मद रफी साहब की याद से लबरेज है, उनके गीतों की इसमें याद भरी है। ये इबारत है कि वो आवाज जिसका आगाज और अंदाज अनंत है, बनाने वाले ने सात सुरों के तार को जब सजाया होगा। मधुबन से खुशबू, चमन से बहार, नदियों से रवानी, कलियों से नफासत, रात से तन्हाई, सितारों से रोशनी, मोतियों से खनक, डालियों से लचक और चांदनी से नूर की इल्तिजा की होगी। फिर ये रूहानी आवाज बनाकर कहा होगा, चश्मे बदूर दूर रहकर भी आ जा रे की वो पुकार जिसे छू लेने को दिल चाहे। स्वर साज की लय पर मन वादे और प्यार का चर्चा लिए झूमती ये तान, चौदहवीं के चांद को पहलू में लिए आवाज देती है, प्यार से पास बिठाती है और कहती है, क्या तुम मुझे भूल पाओगे। और आज तरह दे हैं इसी अजीम फनकार के जिसे दुनिया ने शहंशाह तरन्नुम तो कभी पैगंबर मौसिकी कहा। श्रोताओ, इन गीतों को यानी मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए गीतों ने हमारी खुशियां बांटी, हमारे गम बांटे। एक करिश्माई आवाज जो हमारे सैनिकों को भी जोश से भर देती थी। कव्वालियों में वो सुरों का उतार चढ़ाव, भक्ति रस में डूबी वो तान, के गजलों में हल्की और नफीस मुर्कियां, तड़प उदासी बेरुखी प्यार और

शरारती अंदाज का, गीतों में अनोखापन, क्या क्या कहें, अल्फाजों के दायरे में रफी साहब की गायकी को बांधना संभव ही नहीं। इस उन्मुक्त आवाज और उनके गीतों के गुलशन से चंद फूलों को चुनकर हमने कार्यक्रम सुरीला सफर आज सजाया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज मोहम्मद रफी के गीतों को आप कितना याद करते हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, ये सभी बातें आप लिख सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स शामिल किए जाएं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है श्रोताओं इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। मोहम्मद रफी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें जरूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओं बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण ठाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का किया स्वागत। कहा इससे परीक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनेगी। जेपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। रांची में सीआईडी आज पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से कर रही है पूछताछ। राज्य में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। जाइका परियोजना के तहत 20 वन प्रमंडलों में सामुदायिक भागीदारी से होंगे विकास कार्य। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं मिसर बेसरा, मोचू मुर्मू और बीरेंद्र हांसदा 14 दिन के पुलिस रिमांड पर। नेटवर्क और फंडिंग समेत कई पहलुओं पर होगी पूछताछ। और भारतीय फुटबॉल टीम 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होगा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक निवारण विधेयक संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक और वंदे मातरम विधेयक के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नया कानून पेपर लीक पर प्रभावी अंकुश लगाएगा, जबकि वंदे मातरम विधेयक राष्ट्रगान समान सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: कल का दिन भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था और वो तो ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस सिस्टम लेकर आएंगे जिससे इस तरह के क्वेश्चन पेपर लीक की संभावना नगण्य हो जाए। और उसी के साथ वंदे मातरम के लिए भी 3 साल के सजा का प्रावधान हुआ। अगर आप कोर्ट का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा कदम था।
1: इधर वंदे मातरम को कानून के जरिए अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि देशभक्ति कानून से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय वंदे मातरम का सम्मान करता है और इसके लिए अलग कानून की आवश्यकता नहीं है।
4: राष्ट्रभक्ति के लिए अगर हिंदुस्तान में अगर कोई कानून बनता है तो हमें लगता है कि यह सबसे बड़ी विडंबना है। वंदे मातरम हर भारतीय और भारतीयता की एक पहचान है और वंदे मातरम जब होता है तो स्वाभाविक तौर पे हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है, तो इसके लिए कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं।
1: झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के

0: समक्ष प्रदर्शन कर कथित जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सांसदों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज फिर पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व उनसे भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और निजी एजेंसी की भूमिका सहित विभिन्न बिंदुओं पर अब तक दो बार लंबी पूछताछ की जा चुकी है। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जाइका के प्रतिनिधिमंडल ने रांची के वन भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार से मुलाकात कर झारखंड में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन पर चर्चा की। जाइका परियोजना के तहत राज्य के 20 वन प्रमंडलों, 47 वन क्षेत्रों और लगभग 1400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर वन संसाधनों के सतत उपयोग, जल मृदा संरक्षण और महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पीसीएफ संजीव कुमार ने कहा कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन संरक्षण को नई गति मिलेगी और जाइका ने तकनीकी व वित्तीय सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर रांची के योजना भवन में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए ग्रामीण विकास, नगर विकास, शिक्षा और स्वच्छता समेत सभी विभाग मिलकर इसे जन आंदोलन बनाएं और जिला से पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के DSW डॉ. सुदेश कुमार साहू ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल होंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
1: 9 तारीख को हम लोग अपना दीक्षांत समारोह करेंगे, जिसमें कि हमारे बीए में 6 सेमेस्टर तक क्लियर कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो डिग्री 22-26 सेशन वाले को 6 सेमेस्टर तक की मिल गई है, वो होंगे, प्लस एमए के हमारे जो बच्चे हैं वो होंगे।
0: प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसर बेसरा, मुढ़ू मुर्मू और गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा को अदालत ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब झारखंड पुलिस, एनआईए और आईबी की टीमें उनसे माओवादी नेटवर्क, लेवी वसूली, हथियारों की आपूर्ति, फंडिंग और संगठन के सक्रिय कैडरों के संबंध में पूछताछ करेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में बिहार के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
2: पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत रात में छापेमारी के दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इन व्यक्तियों से कुल मिलाकर 2.5 केजी अफीम की जब्ती हुई है। दूसरी घटना हमारे सतपुरवा थाना क्षेत्र की है, जिसमें कि एक संदिग्ध वाहन बोनट को तलाशी लेने पे तथा डिक्की की तलाशी लेने से कुल मिला के 33.5 केजी से ज्यादा गांजा उससे जब्त किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति जो कि बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले, इनकी गिरफ्तारी हुई है।
0: आज सुबह के सेशन में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। और पांच बार का फीफा विश्व कप विजेता ब्राजील भारतीय फुटबॉल टीम से कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगा। यह मैच 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम

स्टेडियम में खेला जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कल इसकी घोषणा की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का किया स्वागत। कहा, इससे परीक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनेगी। जेपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। रांची में सीआईडी आज पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से कर रही है पूछताछ। राज्य में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। जायका परियोजना के तहत 20 वन प्रमंडलों में सामुदायिक भागीदारी से होंगे विकास कार्य। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं मिसर बेसरा, मोछू मुर्मू और बीरेंद्र हांसदा 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। नेटवर्क और फंडिंग समेत कई पहलुओं पर होगी पूछताछ। और भारतीय फुटबॉल टीम और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होगा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ससुराल का ये गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण थाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए यानी सा स्वर से बेहद कोमलता और नजाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत गीत के बोल, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज की मिठास, ठहराव, मुर्कियां ये सभी इस्तेमाल किए हैं वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नजर आता है, जिसके साथ रफी साहब की जो अलगाकारी है स्वसंवाद करता है ये गीत। अंतरे में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं। यही है कि हम सब मोहम्मद रफी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी जिंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अभी तो स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफर तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोता रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में ढकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बचने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूल कर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफी साहब की आवाज ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज

जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफ़ी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफ़ी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे, जो ग्रामाफोन पर बजते थे, उनकी जो यादें थी वो आप से साझा कर सकते हैं श्रोताओं। यानी हम बात कर रहे हैं रफी साहब के गीतों के कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो। और इन्होंने मोहम्मद रफी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

जो रफी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गजब का है श्रोताओ, जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव, स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है, लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है, जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज है जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे, तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफ़ी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों, यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज जो है आपको किस अभिनेता पर खास जचती हुई नजर आती है और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया फिल्माया गया वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज थी। नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओं, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींद का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये एक, मोहम्मद रफ़ी ने अपने जादुई आवाज का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफ़ी साहब की अगर आवाज़ को आप सुनेंगे तो गजलनुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफ़ी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूंगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफ़ी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी की अमर आवाज़ की झलक समाई हो। आज आ रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था उन्होंने। इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक बढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी, और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी, और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं, विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। तारिक और काजल किरण पर फिल्माया गया, जो नजर आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं, रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शमी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शमी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ एक इस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओं, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी साहब के। वैसे श्रोताओ बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो तो आप हमसे जरूर बता सकते हैं।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
0: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव

0: बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल दो विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन दो छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ेराम हेडगेवार थे।
1: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
0: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था।

लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉयस राय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राजसत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया।

0: किया। इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

0: पर उससे भी बढ़कर ये प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन दो ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भ्रम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन

0: विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
2: सदन की गरिमा के साथ खेलवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
3: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
4: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन

0: लिया। सीबीआई जांच से कम स्वीकार नहीं, क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
1: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरला, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
2: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज 100

0: 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: संगीतकार रवि का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनु

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही सीआईडी जांच को महज एक दिखावा करार दिया।
1: झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से भारी बारिश में भी। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ, क्योंकि वहाँ खुला रेट है, 1.5 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ। अब पहला हिंदुस्तान में ऐसा केस है कि बाकायदा एक होटल लीज भी लिया गया, क्यों? आंसर शीट लिखवाने के लिए।
0: इधर रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज लगातार तीसरे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले जांच एजेंसी उनसे 2 दिनों में करीब 8-8 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। माय भारत प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में यह नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा। इसके तहत हर रविवार खेल, नुक्कड़ नाटक और ध्यान सत्र जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 और बाल हेल्पलाइन 1098 सहित कई आपातकालीन सेवाएं एक ही मंच पर तुरंत उपलब्ध होंगी। चतरा जिले में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने पिछले 7 महीनों में 61 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रिकॉर्ड 758 यूनिट रक्त संग्रहित किया है। सोसाइटी के सचिव धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय थैलेसीमिया, कैंसर और सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को मिल रहा है।
2: चतरा रेड क्रॉस के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच रक्त मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर थैलेसीमिया के जो मरीज हैं, कैंसर रोगी हैं या फिर आदिम जनजाति परिवार के लोग हैं, उन्हें निशुल्क रक्त मुहैया कराया जाता है। हमारा निवेदन होगा आम जनता से भी कि रक्तदान के प्रति जागरूक हों और खुलकर रक्तदान करें, ताकि हमारे दिए गए रक्त से किसी की जान बचती है तो हम बचा लें।
0: जामताड़ा जिले में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सोनवाद गांव के एक और मेहजाम थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ा गया। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 फर्जी सिम कार्ड और 2 एटीएम कार्ड एवं 1 दोपहिया वाहन बरामद हुआ है। लोहरदगा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शहरी क्षेत्र के बीएस कॉलेज रोड पर हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: जी हेलो सहेली।
0: नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ और ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाले लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, अपना शौक एक हमें रखना चाहिए जिसके कारण हमें जी। जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं।
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ, मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है।
0: जी जी यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से।
0: अपना नाम बताइए
1: जी। रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है जी। रितु जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ
0: जी। और ये बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं?
1: जी शौक तो यही है जी, मैं तो ज्यादातर जी घर में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
0: जी ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट
0: जी। और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेलीज पे, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: जी जी जी, तो बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ।
0: रितु राजपूत, कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैम ग्राम सरायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ।
0: बताइए रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम घर पर रहकर काम करती हूँ।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम हम साथ साथ हैं मूवी का ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ, और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो, बधाई हो आपको। ये बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं?
1: जी हाँ।
0: जी जी जी, अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है, और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं, और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए, अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है, क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है। अभी रुकी हुई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं? कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है, और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं, और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे, और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से, मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद भी छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का, ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजवीये नागपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: जिंदगी में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ,
0: अच्छा
1: खुद का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: जी, मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर।

0: चलती हूँ।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती है?
0: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से, दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: ओ मेरी जंग है वो गीत जाएंगे हम माँ के ऊपर।
1: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी बताइए, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी, जी बताइए क्या करती है आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ।
0: शॉल बनाती है जी?
1: हाँ।
0: शॉल की बुनाई करती है जी?
1: हाँ दीदी।
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ।
0: जी जी जी, चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती है।
0: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
1: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और अपने शहर के बारे में बताइए।
0: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है ये। बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है
1: जी।
0: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरह लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
1: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ
1: जी। घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में।
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: हाँ
0: हुई हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी आपने
1: बिल्कुल
0: रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, तो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी। मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी। स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी।
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं,
0: जी
1: है ना। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
0: जी
1: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
0: जी
1: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख तो बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
0: जी, यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपका दिन का बिल्ला है उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
1: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
0: जी
1: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली।
0: जी तो हम
1: बहुत
0: सभी
1: ही
0: को
1: प्यार,
0: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं बेचारे भूखे होते हैं तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने
0: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
0: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी। मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप
1: जी? मैं भोपाल से बात कर रही हूँ
0: जी। मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना
0: जी। छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है
1: जी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है।
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: जी मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ
0: जी। मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानि 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288 यानि 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानि 022। चलते चलते मैं आपको बता दे, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज लगातार तीसरे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से

0: घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोडरमा स्वच्छ भारत मिशन फेज दो के तहत राज्य का पहला ODF प्लस जिला बनने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजीता हिम्ब्रम ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि जिले ने 71% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगस्त महीने तक शेष कार्य पूरे कर इसे मॉडल जिला घोषित किया जाएगा। चतरा जिला प्रशासन ने इको पार्क में बैटरी चलित ई कार्ट सेवा शुरू करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। NTPC इसके लिए 13 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। 75 एकड़ में फैले इस पार्क में ई कार्ट सेवा शुरू होने से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को बड़ी सहूलियत होगी। गिरिडीह में आज 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कुछ तो प्लान किया था, अब और कितना प्लान करूं? इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
2: ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: किसी की नहीं।
1: बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी। फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो नहीं तो तुम अपनी पार्टी यही मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1340।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी,
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी,
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूति

0: शक्तियों को जन्म दिया है।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
0: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
1: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
0: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
0: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। 1885 बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और

0: इलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
1: प्रणाम गुरुदेव।
2: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
1: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है। लेकिन गुरुदेव, हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
2: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
1: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
2: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
3: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
0: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई, रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी, प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप

0: साहित्य मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वरमालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
1: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
0: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1340 आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेल विकास के लिए खेलो इंडिया योजना को भी विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने लोकभवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों से संवाद करते हुए राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। हजारीबाग जेल में आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मुर्गी पालन और सिलाई कटिंग प्रशिक्षण शिविर का

0: शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की समर्पण नीति का उद्देश्य इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना और कोल्हान संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। उन्होंने पुरुषों की 110 किलोग्राम से अधिक भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह और महिला चक्का फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कलीरामना की सराहना की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

आशिक फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है जीने की राह।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा खेती बारी, बस कुछ ही देर में।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सब भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार हैं। और जैसा कि हम इन कार्यक्रम में अपनी खेती बारी शुरुआत कर दे लिये और आशा करेंगे कि सभी भाई बहन अपन रोपने के काम भी कर ले होतीन, और जो नहीं कर ले हथिन जगह खेत में पानी के जमाव नहीं होले है वो कुछ समय के बाद देखा कि वो भी रोपने के काम अपन करते हैं। और जैसा कि खेती बाड़ी भी हम इन कर रही है और पशुपालन भी हम इन कर रही है और खेती के साथ देखा जुड़ल बहुत सा काम है, जैसा कि कृषि वानिकी के हम बात कर रही है और कृषि वानिकी के बहुत बड़ा महत्व भी है। और देखा कृषि वानिकी में हुआ का है कि खेती बाड़ी जो हम इन जब कर रही है ओकर साथे साथ अगर फलदार पौधा होले, इमारती पौधा होले जो कि बाद में इमारती पौधा बनते हैं, और साथे साथ अगर जड़ी बूटी के अगर कोई पौधा होले वो कर साथे साथ हम इन जब कर रही है, यानी खेती बाड़ी और ई काम जब हम इन कर रही है तो एक कृषि वानिकी हम इन बोले है।

और देखा ई करे से हम इनके देखा कि कुछ समय के बाद देखा कि हम इनके आय में भी वृद्धि देखे के मिलते है। और इस एकरा करे से का हुआ है, एक अगर तू खेती बाड़ी के साथ साथ अगर फलदार पौधा होला या इमारती पौधा भी लगावा है अगर, तो ओकर से माटी के कटाव भी एकर में रुक जा है। और देखा कि भी बरसात के जो कि समय है, और बरसात के समय में जैसा कि हम जाने कि बहुत तरह के रोग व्याधि भी एकर में हुआ है। और रोग व्याधि में अगर हम बात करबे तो बरसात के समय में दो तरह के तरह से रोग हुआ है, जो कि एक बोलबे हमारा हमीन कि जल जनित रोग। जल जनित रोग अगर हम बात करिए कि जल से जो हम इनके पानी से जो रोग हुआ है वो रोग हुआ हो सका है हम इनके टाइफाइड, यानी कि अगर हम इन दूषित पानी और खाना अगर हम इन खा लिए तो ओकर से ये बीमारी होए के संभावना एकर में बनल जाए। और ये बीमारी जेकरा हुआ है और तेज बुखार भी एकर में देखे के मिले हैं हम इनके। हैजा जो कि बैक्टीरिया के कारण होए वाला एक गंभीर दस्त है, और एकर में उल्टी के संक्रमण भी देखा एकर में हो जाए। साथ ही साथ देखा पीलिया जेकरा हम इन बोले जॉन्डिस भी बोले हिए, और हेपेटाइटिस ए और ई देखिए गंदा जो पानी हुआ है वो लीवर पे असर कर रहा है, और आंख देखा एकर में हल्का पीला हो जाए। दस्त और गैस्ट्रो इंट्रीज हुआ है एकर में देखा पेट में ममोड़ और उल्टी और पानी के कमी के कारण ये बीमारी देखा हुआ है। पेचिस जेकर में हुआ है कि आंत में संक्रमण हो जाए जेकर कारण दस्त के साथ खून भी एकर में आवे है। लेप्टोस्पायरोसिस जो कि गंदा जो बारिश के पानी या बाढ़ में नंगा पांव जो चले से हुआ है ये रोग हुआ है। अब देखा ये अगर हमीन के रोग हुआ है तो एक उपाय भी हमीन कर करे के चाहिए, और किसी तरह सबसे पहले तो एक में बचाव करे के चाहिए कि हमीन ये रोग न हुए तो एक लगी हमीन का कर सका ही है। तो ये रोग न हुए एक लगी हमीन बचाव में हमीन उबला पानी, यानी हमीन हमेशा बोल रहे हैं कि बरसात के समय में हमीन पानी अच्छा से उबाल के कम 10-15 मिनट पानी बढ़िया से उबाल के पिए के चाहिए, या फिल्टर हमीन के पानी पिए के चाहिए साफ पानी। साथ साथ साफ सफाई के पूरा ख्याल रखे के चाहिए, आस पास देखा कहीं गंदगी ना होवे दे ना करे। तो इस साफ सफाई के अगर हम इन रखे तो बहुत तरह के बीमारी हम इनसे दूर भाग जाए। बाहरी खाना या पानी जो है एक से हम इनके बचे के चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में देखा किस तरह के लोग पानी के इस्तेमाल कर ले, किस तरह क्या खाना बना ले, एकर में भी हम इनके ये चीज खाना और पानी बाहर के जो खाइए ओकर से बचे के चाहिए। साबुन से देखा हाथ जो है खाए के पहले जरूर धोवे के चाहिए, और खाए के बाद भी धोवे के चाहिए। जल जमाव अगर कहीं हो रहा तो एकर में जल जमाव के न हुए दे, क्योंकि देखा जल जमाव जब हुआ है तो बहुत सा मच्छर जो है पनपे है, तो ये सब चीज हुआ है। और ये सब बचाव के करे के बाद भी अगर किसी तरह के अगर बीमारी हुआ है तो हम इनके जो नजदीकी डॉक्टर जो हमके बढ़िया डॉक्टर है ओकर से तुरंत मिले के चाहिए, और देखा ओकर अपन बात बताबे के चाहिए, तब डॉक्टरी उपाय से उनकर जो बीमारी है वो एकर में खत्म हो जाते। साथ ही साथ जल जनित के हम बात करिए दिलिए, मच्छर जनित भी बीमारी बहुत सा होकर में होवा है। एकर में मच्छर जनित में हम बात करबे डेंगू जो कि एडीज मच्छर के काटे से फैला है, एक अगर ये बीमारी केकरो होवा है तो तेज बुखार जोड़ों में दर्द एकर मुख्य लक्षण एकर में होवा है। मलेरिया जो कि इन्फ्लुएंसिस मच्छर के कारण होवा है बीमारी, जेकर में कपकपी के साथ तेज बुखार भी एकर में आवा है। चिकनगुनिया ये जो है बीमारी की एडी मच्छर के द्वारा फैला है, एकर में जोड़ों में जो बहुत ज्यादा एकर में दर्द हुआ है और अकड़न हुआ है। एकर बचाव के खातिर पानी में के जो है वो जमे नहीं दे अपन आस पास अपन गमला में या कहीं नाली में पानी इकट्ठा हो रहा है या कहीं गड्ढा में इकट्ठा हो रहा है तो ये चीज न हुए दे। साथ साथ मच्छरदानी के प्रयोग हमेशा करे जेकर से हम इनके देखे मच्छर हमें काटे से हम इन बच सके ही है, या मच्छर भगाए वाला कोई क्रीम अगर है तो उठकर भी इस्तेमाल हम इन कर सके ही है। पूरा हम इनके भी है एक में कपड़ा पहने के चाहिए कि आधा हाफ बाही के या हाफ पैंट इस टाइप के ना पूरा जो शरीर के ढके वैसा एक में हम इन अगर कपड़ा पहनाइए तो ई हम इनके लिए बहुत अच्छा एक में रहता है। और देखा हम इन सावधानी के बात कर लिए और बचाव की भी बात कर लिए, और किसी भी तरह से अगर सावधानी करे के बाद भी अगर ये रोग अगर हुआ है तो देर न करे के चाहिए, तुरंत नजदीक के जो डॉक्टर है ओकर संपर्क करे के चाहिए। अब देखा सरकारी अस्पताल में भी हर तरह का देखा सुविधा हम इनके हो गए है, तो हम इन सरकारी अस्पताल में भी जा करके अपन जो इलाज करा सके या जे डॉक्टर

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: देखा विभिन्न गीतनाद भी सुन लिए और जरूरी संदेश भी साथ साथ और पहले सुन लिए। अब बढ़िए जानकारी की तरफ। तो आज हम इन जानकारी ले लेंगे रोपाई विधि एवं श्री विधि से धान की खेती कैसे कर जाए एक बारे में जानकारी दे रहे थे महेंद्र प्रसाद जो कि किसान है और इनखर से हमिंद ने से बातचीत कर ली यानी हम मुकेश कुमार। तो सुनल जाए जानकारी।
1: श्रोताओं आज हम आए हुए हैं बानादाग गांव और हम आपको मिलवा रहे हैं एक अनुभवी किसान महेंद्र प्रसाद से। तो महेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। तो महेंद्र जी अभी आपका खेती बारे में क्या चल रहा है?
2: और अभी फिलहाल हम लोग खेत में धान लगा रहे हैं।
1: धान लगा रहे हैं तो कितना कट्ठा में धान लगाए?
2: धान करीब करीब 30 कट्ठा में लगाए।
1: 30 कट्ठा में। अच्छा एक बात हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि 30 कट्ठा में आप जो धान लगाए तो श्री विधि में जैसा धान का खेती इधर लोग कम करते हैं आप किए हैं श्री विधि का?
2: हाँ हम जो कम से कम 6-7 कट्ठा में श्री विधि का खेती किए हैं।
1: अच्छा
2: जहाँ की पानी का साधन है।
1: जहाँ पानी साधन है
2: हाँ और बाकी सब जनरल विधि से ही किए हैं।
1: अच्छा पहले हम रोपाई विधि का बात कर लेते हैं छीटा विधि भी आप बोलते हैं उसको। तो इसका जो खेत का तैयारी है ये किस तरह किया था?
2: इसका तो सबसे पहले हम लोग बिचड़ा डालते हैं इसका
1: जी।
2: श्री विधि से अगर डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले धान का हम लोग उसका उपचारित कर लेते हैं
1: जी।
2: उपचारित करने का उसका नियम है कि से धान हम लोग खरीद के लाए
1: जी।
2: लाने के बाद उसको नमक का घोल बना करके
1: जी
2: और नमक का घोल तैयार हुआ कि नहीं हुआ इसको देखने के लिए हम लोग अंडा डुबाते हैं। अगर अंडा ऊपर तैरने लगे
1: अच्छा
2: तो हम लोग समझेंगे नमक का घोल तैयार
1: हो गया
2: है। और तैयार हो जाने के बाद उसमें फिर हम लोग धान को डालते हैं
1: जी।
2: और धान डालने के बाद जितना भी खराब धान होता है वो ऊपर आ जाता है।
1: ऊपर आ जाता है
2: और ऊपर वाले धान को सब फेंक देते हैं। नीचे वाले धान को निकाल करके 3 पानी में सादा पानी में धोते हैं उसको
1: जी।
2: और धोने के बाद फिर उसको सुतली बोरा में 3 दिन तक अंकुर के लिए छोड़ देते हैं
1: जी।
2: तब तक उधर खेत भी तैयार करते हैं हम लोग
1: जी।
2: और खेत तैयार करते हैं तो उसमें पुराना गोबर डालते हैं। डालने के बाद तब अंकुरित बीज को उसमें छिड़कते हैं। छिड़कने के

0: बाद वो 10 या 12 दिन में रोपने लायक हो जाता है, 4 या 5 इंच का हो जाएगा
1: जी।
0: तो रोपने के बाद वो फिर बीजा जब तैयार हो जाता है तो हम लोग खेत भी तैयार कर लेते हैं। अब तैयार करते हैं तो 10 इंच की दूरी पर वो धान को हम लोग लगाते हैं
1: श्री विधि में जी। अच्छा, और जो ये आप लोग छीटा विधि जो बोलते हैं,
0: हाँ,
1: इसमें किस तरह क्या करते हैं?
0: ये जनरल विधि है, हम लोग जिस प्रकार पहले से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा तो हम लोगों का पैदावार सराई में होता है
1: जी।
0: और जो वो जो विधि है उसका भी हम लोग उपचारित इसी तरह से करते हैं
1: जी।
0: और अंकुरित करने के बाद भी छीटते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग 10 इंच पर जो एसआरआई लगाते हैं वो ऐसा ना लगा करके 4 इंच 5 इंच की दूरी पर लगाते हैं उसको।
1: एक नंबर खेत, दो नंबर खेत, तीन नंबर, तीनों में पानी का जमा भी अलग अलग होता है। तो इसमें आप किस तरह लगाए हैं? तीनों में एक ही किस्म का धान लगाए या अलग अलग?
0: ये सब तो तीनों अलग अलग किस्म का लगाते हैं,
1: अलग अलग,
0: क्योंकि दो नंबर खेत के लिए अलग धान आता है कम दिनों के लिए, 120 से 125 दिन का जो धान होता है उसको लगाते हैं दो नंबर में, और 110 दिन का जो होता है टाइम का वो धान लगाते हैं तीन नंबर में
1: जी।
0: और बाकी 130 से 35 दिन का एक धान आता है उसको हम लोग नीचे वाले खेत में लगाते हैं।
1: अच्छा, अच्छा, रोपाई जब ये रोपाई विधि जो आप बोले आप छीटा विधि में, इसमें जब ये पानी का जमा होता है तो ठीक है, श्री विधि में ये पानी जो है वो कैसा प्रभाव करेगा?
0: ये क्या है कि श्री विधि में रोपाई के समय सिर्फ 2 इंच पानी चाहिए उसमें खेत में
1: जी,
0: और अगर ज्यादा पानी है तो उसको निकाल देते हैं हम लोग,
1: ज्यादा मेल चोक निकाल देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि इसका बीज 4 से 5 इंच का रहता है, 2 इंच आपका मिट्टी में जाता है, तो पानी उसमें एकदम 2 इंच चाहिए, उससे ज्यादा नहीं
1: चाहिए।
0: और ये धान श्री विधि में लगने के बाद आपका 10 दिन तक पता ही नहीं चलेगा खेत में कि आपका धान का रोपाई हुआ है। 10 दिन के बाद जब कलई फेंकने लगेगा धान का तब वो पता चलता है।
1: अच्छा,
0: तो ये लगाने समय देखिए, पहले का जो बुजुर्ग लोग हैं, माँ दादी लोग, ये क्या था कि शुरू में जब हम लगाए थे तो पता नहीं चल रहा था, इन लोग गाली भी देती थी। अच्छा, क्या पता नहीं कैसे लगा दिया धान, ये होगा कि नहीं होगा।
1: हाँ,
0: लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन के बाद फिर इन लोग को ले गए जब वहाँ, तब जब कलई फेंकने लगा धान में तब इन लोग को समझ में आया।
1: अच्छा,
0: और अच्छा पैदा हुआ, एक धान में कम से कम 30 से 35 कलई फेंका।
1: अच्छा, थोड़ा सा मेहनत श्री विधि में ज्यादा लगता है, लेकिन अगर सावधानी से किया जाए तो ये
0: सावधानी से किया जाए तो इसमें मजदूर का भी बचत है,
1: मजदूर का बचत है,
0: धान भी कम लगता है
1: जी।
0: आपका 1 एकड़ में 2 से 2.5 किलो धान लगता है
1: जी।
0: और दूसरा है कि आपका अगर जनरल विधि से लगाते हैं तो उसमें हाइब्रिड का जो धान होता है 7 से 8 किलो लग जाता है
1: जी।
0: तो बचत तो है, थोड़ा सा सिर्फ सावधानी पूर्वक लगाने का।
1: निराई गुड़ाई की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी
0: अभी तो रोपा चल रहा है
1: जी, अभी चला रहा है।
0: हाँ, चलने के बाद जो निकाय का जो काम होता है वो करीब 15 दिन के बाद
1: जी,
0: अगर पानी अच्छा से गिरा और अवेलेबल खेत में रहा तो ज्यादा आपका खरपतवार नहीं आएगा। अगर पानी सूख गया खेत में तो खरपतवार निकलना शुरू हो जाता है।
1: महेंद्र जी, चूंकि आप दोनों विधि का प्रयोग करते हैं, ये श्री विधि का भी, तो इसमें आप क्या अंतर देखते हैं दोनों विधि में?
0: अंतर तो बहुत है
1: जी।
0: अगर पानी का अच्छा साधन रहता हम लोगों को,
1: हाँ,
0: तो हम तो सारे खेत में ही श्री विधि लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन समय पर उसको पानी चाहिए, कोनोमीटर चलाने के समय, उस समय भी 4 इंच 5 इंच पानी चाहिए खेत में, तब वो कोनोमीटर अच्छा से चल पाता है। और अगर पानी नहीं है तो सूखा में आप चला नहीं सकते
1: जी।
0: कोनोमीटर चलाने से होता है खरपतवार तो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद जो खरपतवार जो उसमें चला जाता है, मिट्टी में जो चल जाता है, वो हरा खाद के रूप में भी तैयार होता है वो
1: जी।
0: तो इससे क्या होता है कि धान का जड़ भी हल्का हो जाता है
1: जी,
0: और हल्का होने के बाद कले उसमें ज्यादा फेंकता है,
1: ज्यादा फेंकता है।
0: हाँ,
1: अच्छा, हम बात करेंगे कि मान लीजिए 1 एकड़ में, क्योंकि श्रोता भाई को समझाने के लिए कि 1 एकड़ में अगर कोई श्री विधि का लगाया हुआ है और 1 एकड़ में कोई छीटा विधि का लगाया हुआ है, तो दोनों में जब उपज होगा तो उसमें आप कितना का अंतर?
0: बहुत ज्यादा अंतर होता है, हमको लगता है कम से कम भी तो 1/3 का अंतर होता है।
1: 1/3
0: एकदम,
1: जैसे मान लीजिए इसमें 3 क्विंटल हुआ तो उसमें 1 क्विंटल हुआ।
0: हाँ,
1: क्योंकि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है, इधर के लोग नहीं करते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किसी के ज्यादा खेत है, जैसे आपने भी बताया कि आपका 30 कट्ठा है तो आपने 7 कट्ठा में लगाया है और 23 कट्ठा में अपना पुराना लगाया है। अच्छा, इसके अलावा आप सालों भर क्या करते हैं?
0: सालों भर इधर है कि थोड़ा जहाँ 3 नंबर का टाण है, बारी है, वहाँ हम लोग गोभी का फसल लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, अभी क्या है कि भादो महीने के बाद
1: जी
0: जब पानी गिरना कुछ कम होगा
1: जी
0: तो हम लोग गाजर लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और

0: गाजर लगाएंगे तो वो हरा पत्ता वाला जो छठ पूजा के समय
1: जी,
0: अच्छा पैसा, हाँ अच्छा आमदनी होता है उससे
1: जी,
0: पत्ता सहित बिक जाता है बाजार में।
1: अच्छा,
0: और अगर पहले गाजर तैयार हो गया तो आपका गाजर का दाम भी 30 से 40 रुपए रहता है उस समय।
1: अच्छा, तो ये गाजर का जो आप बात बताए मतलब, तो इसका भी खेत का तैयारी कुछ अलग करते हैं
0: क्या? हाँ, इसका जो है सो कम से कम ये तो आपका 3 से 4 बार उसका जुताई करना पड़ता है, खेत से गहराई जुताई
1: जी।
0: उसके बाद जो है सो गाजर का दाना, बढ़िया दाना खरीद के बाजार से, तब उसको लगाते हैं हम लोग बारी में।
1: अच्छा,
0: उसका भी निकाई गुड़ाई करना पड़ता है।
1: अच्छा, सालों भर देखा जाए तो आप धान में तो उधर व्यस्त है, सब्जी भी लगाते हैं, तो बताया कि जो आप गाजर लगाएंगे वो छठ के समय में निकलेगा ही, तो इसमें आपका जो बड़ा खेत है उसमें ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं और गाय गोरू का भी प्रयोग करते हैं।
0: हाँ, दोनों चीज करना पड़ता है
1: जी,
0: क्योंकि बड़ा अगर खेत है तो उसमें ट्रैक्टर अभी तो है, ग्लोबल हो गया जगह ट्रैक्टर।
1: अच्छा,
0: वो 700 से 800 रुपए घंटे में वो कर देता है,
1: तो जिसका अपना ट्रैक्टर भी नहीं है भाड़े पर, अपना
0: भाड़े पर लेकर के करते हैं,
1: करते हैं।
0: और जहाँ छोटा खेत है वहाँ अपना जानवर से भी कर लेते हैं।
1: जानवर, कितना जानवर है आपके पास?
0: जानवर अभी 2 बैल है
1: जी
0: और 1 गाय है।
1: गाय अपना घर में दूध
0: करिए,
1: मतलब सालों भर आप व्यस्त रहते हैं, दोनों विधि का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि जो किसान भाई लोग सुन रहे होंगे तो चूंकि दोनों विधि वो लोग समझ भी रहे होंगे क्या अंतर है, जैसे आपने बताया 1/3 का अंतर है, आशा करेंगे वो लोग भी ये विधि को अपनाएंगे। तो महेंद्र जी, इतना बढ़िया जानकारी आप हमारे श्रोता भाई बनकर दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हम इन जानकारी सुना लिए रोपाई विधि एवं श्री विधि से धान के खेती के बारे में जानकारी दे रहे थे महेंद्र प्रसाद, और इनसे बातचीत कर रहे मुकेश कुमार यानी कि मैं, और देखा कि अब हम इन आगे बढ़ेंगे और देखा आगे हम इन बातचीत करबे खेती के साथ साथ डेयरी फार्म और बकरी पालन से अतिरिक्त आय के विषय में। तो देखा खेती बाड़ी तो हम इन करते रहेंगे और साथ ही साथ अगर हम इन डेयरी फार्म और बकरी पालन भी करेंगे तो हम इनके आय बढ़ते हैं। और देखा खेती बाड़ी हो या पशुपालन हो, दोनों जो है एक दूसरा के पूरक है। अगर हम इन खेती बाड़ी देखा करेंगे तो हम इनके जो पशुधन के देखा कि एक एक चारा मिल जाए है, और हम इन अगर पशुपालन करेंगे तो ओकर से गोबर खाद जो निकला है वो हम इनके खेती बाड़ी में काम भी आ जाए है। और देखा जाए बहुत सा छोटा जो अभी भी खेत है ओकर में अभी भी हल बल के प्रयोग एकर में होवे है, तो हमें इनके खेती बाड़ी भी करे के चाहिए और साथ ही साथ डेयरी फार्म भी करे के चाहिए। और देखा गरीब के जो एटीएम एक बात बोले ये कि वो बोले ये बकरी पालन के, यानी कि जब जरूरत अगर हम इन बकरी पालन करे तो हम इनके जब त्योहार में यार कभी भी जरूरत जब भी पड़े है तो हम इन बेच करके हम इन एक तरह के पैसा तुरंत पा सके, जरा हम इन गरीब के एटीएम भी बोले बकरी पालन के। और देखा अब इतना समय हम इनके पास जरूर है कि एक प्यारा सा गीत हम इन सुन सकेंगे, तो सुनिए प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के कारण देवघर और संताल परगना में कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होने की वजह से यह निर्णय लिया जा सकता है। सरायकेला खरसावां में आदित्यपुर स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी हादसे के शिकार मृत श्रमिक मुरली पात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। कंपनी प्रबंधन ने आश्रितों को 10,60,000 रुपए और ग्रुप इंश्योरेंस की पूरी राशि देने का निर्णय लिया गया है। लोहरदगा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और एक युवा व्यवसायी की हत्या के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल लोहरदगा बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। चैम्बर ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गांडकीदा गांव में अज्ञात तत्वों द्वारा एक दंपति की हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस दोषियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए डाल्टनगंज रेलवे कॉलोनी से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु DSP मृत्युंजय गोप के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम 690 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। गढ़वा जिले में औसत से कम बारिश होने के कारण कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान के बजाय मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की वैकल्पिक खेती करने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार अलनीनों के प्रभाव के चलते जिले में खरीफ सीजन की फसलें प्रभावित हुई।

0: इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही सभी बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी, साथ ही अपने पसंदीदा कार्यक्रम का भी बेसब्री से इंतजार भी होगा। तो चलिए, आपके इंतजार की घड़ियां होती है खत्म और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

इस प्यारे से गीत के बाद चलिए बहनों कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बरसात के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें और साथ ही इस मौसम में होने वाले रोगों से उनका बचाव कैसे करें। बहनों अक्सर बरसात के मौसम में बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है जिससे वे जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इस मौसम में बच्चों को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के कई उपाय हैं, खासकर कि उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हमेशा उबालकर गुनगुना या साफ छना हुआ पानी ही पिलाना चाहिए। हमेशा ताजा बना गर्म खाना खिलाएं और लंबे समय तक रखा हुआ भोजन देने से परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ बाहर के खाने से भी परहेज करना चाहिए, जैसे चाट पकौड़ी, कटे हुए फल और खुले में मिलने वाले जूस से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। हरी सब्जियों का उपयोग हमेशा धोकर करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों को पकाने से पहले गुनगुने पानी और नमक से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। बहनों ये तो हो गई खान पान की बात, इसके अलावा हमें मच्छरों से भी बचाव करना चाहिए, जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। बच्चों को अक्सर बाहर खेलते वक्त जब हम भेजते हैं तो उन्हें पूरी तरह बांह वाली टी शर्ट या शर्ट और फुल पैंट पहना कर ही भेजना चाहिए। सोते वक्त मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली क्रीम या पैच का इस्तेमाल करना चाहिए। घर के आसपास कूलर, गमलों या टायरों में पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का भी खास ख्याल रखना चाहिए। खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद बच्चों को साबुन से हाथ धोने

0: की आदत डालना चाहिए। बच्चों के नाखून छोटे और साफ रखना चाहिए ताकि उनमें गंदगी और कीटाणु ना पनपे। यदि बच्चा बारिश में भीग जाए तो उसे तुरंत साफ और सूखे कपड़े भी पहनाना चाहिए। बहनों, बारिश के दिनों में फ्लू और वायरल बुखार तेजी से फैलता है, इसलिए बीमार लोगों से भी बच्चों को दूर रखना चाहिए। उनके भीगे जूते, मोजे और स्कूल बैग को सूखा ही रखना चाहिए। गीले पैर रहने से फंगल इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलता है। साथ साथ डॉक्टर की सलाह पर फ्लू का टीका भी समय पर लगवाना चाहिए। बच्चों की डाइट में नींबू, आंवला और संतरा शामिल करना चाहिए। साथ ही रात को सोते समय बच्चों को चुटकी भर हल्दी वाला दूध देने से इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। बहनों, बातें तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: ये इयररिंग दिखाना
2: गया तेरा प्राइस मनी।
1: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
3: आते समय कर लिया मोबाइल से।
1: कहाँ?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
1: हाँ,
3: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स,
4: नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस।
1: मान गए, आपको नहीं
5: आपको।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
9: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
10: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, जल संरक्षण और कैच द रेन के अभियान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, पीने योग्य पानी की भारी कमी हो रही है और मानसून के पानी को सहेजना जरूरी है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन राष्ट्रव्यापी अभियान आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं संचय करें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल का संचय करना, सूखे कुओं, बोरवेल और तालाबों के माध्यम से जमीन के अंदर पानी का स्तर बढ़ाना, देश के गांवों और शहरों में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना। बहनों, जल संरक्षण की आवश्यकता के कई कारण हैं, जैसे कि तेजी से भूजल स्तर में गिरावट, लगातार पानी निकालने से जमीन के नीचे का पानी बहुत कम हो रहा है, आने वाले समय में बड़े शहरों और गांवों में पीने के पानी की भयंकर कमी का खतरा है। भारत में बारिश का अधिकांश पानी बेकार बह जाता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारी बहनें

शिक्षित भी हैं और आत्मनिर्भर भी। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां महिलाएं ना हो या उनसे अछूता हो। आज हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो आइए सुनते हैं एक वार्ता, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार हैं देविका वर्मा।

विज्ञान की दुनिया ने मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका। जब हम किसी चिकित्सक के पास अपना इलाज करवाने इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वहां हमारा इलाज होगा और हम पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को, तो ये विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र होता है। इसी प्रकार हम छोटे बड़े उद्योगों में तथा कृषि के क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों के साथ उत्पादन करते हैं तो वहां भी क्रियात्मक विज्ञान है। ये विज्ञान की ही देन है जिसने टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा संचार के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से इतने बड़े विश्व को लघु बना दिया है। आज नए भारत की बात हर ओर सुनाई देती है और नजर घुमाकर देखें तो हमें नए दौर का भारत नजर भी आता है। बहनों, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी देश के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण अंग है विज्ञान। बहनों, विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान के अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान, भू विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि। शिक्षा सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सुशासन के साथ आवश्यक आर्थिक विकास को संतुलित करने का प्रयास करती है। सदियों से देश विदेश में लड़कियां शिक्षित होकर विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना सफल योगदान दे रही हैं। यदि लड़कियां हवाई जहाज में पायलट हैं, तो वे रेल में लोको पायलट हैं। अगर वे कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर चला रही हैं, तो वे सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी चला रही हैं। लड़कियां सेना की तीनों टुकड़ियों के साथ हर सैनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और वे कामयाब भी हैं। भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर आईपीएस किरण बेदी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लड़कियों तथा महिलाओं के विज्ञान के क्षेत्र में उनके मेहनत तथा लगन के लिए समय समय पर कई उपाधियों से सम्मानित किया जाता रहा है। उदाहरण दे सकते हैं, वर्ष 2024 में जब डॉक्टर पूर्वी सौकिया को, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और वो वनस्पति विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा को इस दुनिया में लाने का श्रेय दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कादिम्बिनी गांगुली का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। डॉक्टर गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर बिहार राज्य में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए नई राह बनाई। उस समय जब महिलाओं व लड़कियों का अस्पताल जाना भी शर्म की बात मानी जाती थी, वैसे समय के रूढ़िवादी समाज में डॉक्टर गांगुली घर से निकलकर रोगी लड़कियों व महिलाओं का इलाज करने के लिए अस्पताल जाती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया था। बहनों, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के कई मिसाल मेरी स्मृति में है। उनमें से एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दुनिया भर में नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वप्रथम योगदान देने वाली कोई बालिका है तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में 1820 में हुआ था। बाद में उन्हें ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हुई थी। नर्सिंग की पढ़ाई समाप्त करने के बाद नाइटिंगेल नर्सिंग पेशे से जुड़ गई और बीमारों की सेवा करने लगी। वो कहती थी, मेरा जन्म

मानव सेवा के लिए हुआ है और ये मेरा धर्म भी है। इसी सिलसिले में 19वीं सदी के दौरान हुए क्रीमिया युद्ध में वो घायल सैनिकों की सेवा करने बैरक में जाती थी। रात के अंधेरे में उनके हाथ एक लालटेन होता और उसी की रोशनी के सहारे वे रोगी और घायल सैनिकों की सेवा किया करती थी। वो अपने हाथों बैरकों की सफाई करती, सैनिकों के लिए भोजन तैयार करती तथा उनका मरहम पट्टी करती। उनके साथ लगभग 38 स्त्रियों का एक छोटा सा दल रहता था। फ्लोरेंस को लेडी वीटा लैम्प का नाम दिया गया था। उनकी प्रेरणा पाकर नर्सिंग सेवा से लड़कियां जुड़ने लगी। आज भी नर्सिंग पेशे से जुड़ने के पहले नियम के अनुसार नर्सें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम की सौगंध खाकर पूरी सेवा अवधि को ईमानदारी से निभाने का वादा करती हैं। उनके नाम के साथ का लैंप इस धरती पर हमेशा चमकता रहेगा। बहनों, रेडियम का नाम आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। रेडियम एक रेडियोधर्मी धातु है। इसका मुख्य उपयोग कैंसर के उपचार में एक रेज के रूप में होता है। इसकी खोज भौतिकविद एवं रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने की थी। पोलैंड के वारसा में जन्मी मैरी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई तथा रेडियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रसायन विज्ञान में अध्ययन तथा खोजों के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहनों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम लिया जाता है। कल्पना चावला ने कल्पना से भी आगे की उड़ान भरी। उनका जन्म भारत में हुआ था। कल्पना चावला कहा करती थी, मेरा जन्म अंतरिक्ष के लिए हुआ है और मैं अंतरिक्ष के लिए मरूंगी भी। जब किसी ने कल्पना से प्रश्न किया था कि आप वैज्ञानिक अंतरिक्ष क्यों जाती हैं, तो उनका उत्तर था, हम अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष जाने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं, उनमें से एक है वहाँ रिसर्च करना। पृथ्वी की अपेक्षा अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण हमें वहाँ रिसर्च करने में सुविधा होती है। कल्पना चावला बचपन से ही हवाई जहाज तथा अंतरिक्ष विज्ञान में गहरी रुचि दिखाती थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के बाद वे नासा रिसर्च सेंटर में एक शोधकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। उनकी दूसरी और अंतिम अंतरिक्ष यात्रा 2003 में STS-107 मिशन के साथ हुई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय फरवरी 2003 को कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कल्पना की मृत्यु हो गई। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनकी लगन तथा जुझारू प्रकृति के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाली सुनीता विलियम्स को हम कभी नहीं भूल सकते। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में महिलाओं द्वारा सबसे अधिक बार स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम धैर्य और आत्मविश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। यह सत्य भी है। हमारे पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने में नदियों, सागर, महासागरों से लेकर तालाब, डोभा, जलकूप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर किसी साल वर्षा नहीं होती है तो पृथ्वी पर कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जीना कठिन हो जाता है। अतः हमें जल संग्रह की सुरक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। नदियों में बनाए गए बांध की भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली समाज सेविका तथा पर्यावरणविद मेधा पाटकर को नर्मदा घाटी की आवाज के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहनों, एक शिक्षित जन समुदाय ही उत्साहशील और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। शिक्षा वह मूल मंत्र है जो प्रेरणादायी है। लड़कियों को स्कूल तक लाने की कोशिश तथा यह भी कोशिश कि सारी लड़की

0: लड़कियों का स्कूल में नामांकन कराया जाए और वह बीच में पढ़ाई न छोड़ दे। इस प्रयास के लिए सरकारी समितियों द्वारा कई सुबदलाव भी किए गए हैं। गैर सरकारी संगठन भी इस पथ में उत्साहजनक योगदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बहनों, वैज्ञानिक व्यक्तित्व तथा वैज्ञानिक आविष्कार ने मानव जीवन को इतनी सुविधाएं दी हैं जिससे हमारे समय और श्रम की काफी बचत होती है। हम विज्ञान के ऋणी हैं और सदा इसके ऋणी रहेंगे।
1: बहनों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है, तो चलिए चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

गमे की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला दो घड़ी का दो दिनों की है बहार। गमे की बहती धार कहती जाती है पुकार पुकार। हाय हाय हाय हाय मेहमान कब रुके हैं।

0: तारे।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा गीत संगीत, बस कुछ ही देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज में। फिल्म का नाम है साथी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना चांदनी फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कुली नंबर 1।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं केके और अंतरा मित्रा की आवाज में फिल्म 1920 लंदन का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
5: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
6: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी। जेपीएससी भर्ती गड़बड़ी पर दिल्ली से रांची तक सियासी घमासान। भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। जेएमएम ने लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्य में बढ़ सकती है एसआईआर की अवधि। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शीर्ष अदालत से मिली जमानत। हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेल विकास के लिए खेलो इंडिया योजना को भी विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की।
2: जब से इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें अनियमितता हो रही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है उनसे कहेंगे कि दोहरा चरित्र न अपनाए। झारखंड के बच्चों के लिए जो 5 दिन से युवा बिना खाए पिए वो रोड पे उतरे हुए हैं, वो अपनी मांग मांग रहे हैं, तो आप उनकी भी चर्चा सदन में उठाएं, उनके बारे में भी आप कहें।
0: इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने तत्कालीन अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया है और सीआईडी को जांच सौंप दी है। उन्होंने भाजपा पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: जब भाजपा का कार्यकाल था झारखंड में तो कितनी अनियमितताएं थी एजुकेशन को लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी आने के बाद से उसे धीरे धीरे वो दुरुस्त कर रहे हैं और उसी क्रम में जो उनके बनाए हुए सिस्टम थे, उनके लोग थे, उसी के बीच से इस तरह की अगर गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए तुरंत उन्होंने वहां जो चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन लिया है, तुरंत सीआईडी जांच बैठा दिया गया है। ये भाजपा की पॉलिटिक्स है कि अपने गिरेबान में पहले झांके और फिर दूसरी जगह के लिए बात करें।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने लोकभवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों से संवाद करते हुए राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परिश्रमी लोगों के बीच कार्य करना उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। हजारीबाग केंद्रीय कारा में आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मुर्गी पालन और सिलाई कटिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की समर्पण नीति का उद्देश्य इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
5: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
4: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
5: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
4: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
5: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूलें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
7: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
8: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
7: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 5 अगस्त से शुरू हो रही दावा आपत्ति

0: प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को पारदर्शी सत्यापन के निर्देश दिए हैं। देवघर और संताल परगना में श्रावणी मेला के कारण उन्होंने राज्य में एसआईआर की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिसका प्रस्ताव 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
1: एनुमरेशन फेम में पूरा झारखंड इलेक्शन मिशनरी अपने समय का निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा कर लिया। वर्तमान में भी सावन का मासन का लेकर देवघर दुमका में थोड़ा सा आपका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम लोग समय बढ़ाने के लिए मांग रखेंगे। वो अभी अनामलिस का भी डेटा आ जाती है, फिर उसी हिसाब से एक आंकड़ा हो जाती है कितना समय एक्सटेंशन करना है, इसे उसके बाद कमीशन के साथ में हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। मेरे हिसाब से एक्सटेंशन हो सकता है, कारण एक्सटेंशन भी आवश्यकता भी पड़ेगी।
0: निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोडरमा स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत राज्य का पहला ODF प्लस जिला बनने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजिता हेम्ब्रम ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि जिले ने 71% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगस्त महीने तक शेष कार्य पूरे कर इसे मॉडल जिला घोषित किया जाएगा।
2: अभी इनका 71% है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि इस महीने 100% ये कर पाए। तो अभी जो हमारा 16th वित्त आयोग के जो राशि जो पंचायती राज के द्वारा दिया जाएगा, हम चाह रहे हैं कि दिसंबर 26 ये फेज 2 का अंतिम समय है, तो हम इसी 4 महीने में जितनी भी छोटी छोटी कमी रह गई है उन सबको पूरा कर रहे हैं।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना और कोल्हान संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दिनभर बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ी। गिरिडीह में आज 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में 250 से अधिक बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है।
3: ये टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ। जिले के शहर के छोटे बच्चे जो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का और एक्सपोजर का एक मौका मिलेगा। ये प्रतियोगिता नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने का एक बड़ा अच्छा अवसर होगा, आने वाले समय के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार होने का रास्ता मिलेगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी। जेपीएससी भर्ती गड़बड़ी पर दिल्ली से रांची तक सियासी घमासान, भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। जेएमएम ने लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्य में बढ़ सकती है एसआईआर की अवधि। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शीर्ष अदालत से मिली जमानत, हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत डाडर मौजा एवं आसपास के काजू की खेती से जुड़े किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उपायुक्त आलोक कुमार ने शनिवार को 95 एकड़ भूमि पर फैले काजू बगान का निरीक्षण किया और वार्षिक पैदावार का आकलन कर काजू

0: प्रसंस्करण इकाई अधिष्ठापित करने की दिशा में पहल करने की बात कही।
1: पहले अगर मान लीजिए एक एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है कि उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तो हम लोग और किसानों को इंकरेज कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग पैरेलली ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो भी प्रपोजल है हम लोग बनवाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, तो हम लोग वो प्रपोजल बना के विभाग को भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एक पहल यहाँ पे कर पाए, यहाँ के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा।
0: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन एवं बेहतर कार्य करने वाले जामताड़ा के 7 बीएलओ एवं 4 सुपरवाइजरों को एसडीएम अनंत कुमार ने कप एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा कि
2: नौ जामताड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गणना चरण के दौरान जिन बीएलओ के द्वारा 100% डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया है, और साथ में जो सुपरवाइजर जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है, बैलेंस परफॉर्मेंस है, उन सभी को एक मोटिवेशन के रूप में कप और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया गया है, ताकि इनको देख करके और भी बीएलओ मोटिवेट हों।
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर व्यवहार न्यायालय सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक एवं न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों के अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारियां उपस्थित पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को दी। इस क्रम में कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार ने कहा कि
3: जो कानून बनाया गया उसे हम पॉक्सो एक्ट के अंदर देखते हैं, वहीं दूसरा है बच्चों द्वारा अगर कोई अपराध किया गया हो या ऐसे बच्चे जो समाज में उपेक्षित हैं, उन बच्चों को रिहैबिलिटेट करने का, उन बच्चों के साथ समाज, सरकार, हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारे कोर्ट्स कैसे बिहेव करेंगी उनको रेगुलेट करता है, वो है जजे एक्ट। जितने भी तरह के परेशानियां हैं, चाहे बच्चों के द्वारा किए गए अपराध को लेकर हो या बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध को लेकर, इन दोनों को सेंसिटाइज करने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
0: जामताड़ा जिला के आम नागरिकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों में चरणबद्ध ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि
4: इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर, सभी दस्तावेजों को लेकर के वो नजदीकी CSC या प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरांत को वो ऑनलाइन फी पेमेंट करके स्लॉट बुक करेंगे, और स्लॉट बुक करने के बाद सारे दस्तावेजों के साथ यहाँ इस कैंप में टेस्ट के लिए आएंगे। यहाँ पे अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
0: जामताड़ा जिला के सभी मंदिरों एवं देव स्थलों में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही पूजा आराधना करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
5: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

0: खामोशी फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है नमक हलाल।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा खेलेंगे शान से, बस कुछ ही देर में।

रात्रि के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन है मानिक चक्रवर्ती के, प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: तालियों की गूंज, जीत का जुनून और सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला। नमस्कार साथियों, मैं हूं माणिक चक्रवर्ती और आप सुन रहे हैं आपका अपना खेल गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। ये सिर्फ खेलों की बातें करने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये उन सपनों की आवाज है जो सुबह की पहली किरण के साथ मैदान में पसीना बहाती है। ये उन कदमों की कहानी है जो हार से नहीं हर चुनौती से आगे बढ़ना जानते हैं। अगर आपके भीतर भी अपने राज्य, अपने शहर और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की आग है तो अगले 15 मिनट सिर्फ आपके नाम है। तो आइए जोश जगाइए, हौसला बढ़ाइए और चलिए खेलते हैं शान से।
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4।
0: खिलाड़ियों, हजारीबाग एक बार फिर खेलों के रंग में रंगने जा रहा है। 27 से 29 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाला खेल महोत्सव खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे ग्राउंड रिपोर्ट की ओर, जहां आपको मिलेगी इस आयोजन से जुड़ी खास जानकारियां।
2: हजारीबाग में खेल प्रतिभाओं को मिल रहा है एक बड़ा मंच। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 से 29 अगस्त 2026 तक प्रमंडल स्तरीय हजारीबाग खेल महोत्सव 2026 का आयोजन होना है। महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलने वाला है। ऐसे में मैं आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती इस समय करजन ग्राउंड मैदान के अंदर जिला खेल पदाधिकारी हजारीबाग श्री कैलाश राम के सम्मुख बैठा हुआ हूँ। तो सबसे पहले सर, कार्यक्रम खेलेंगे शान से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार। मैं

0: जिला खेल पदाधिकारी हजारीबाग कैलाश राम,
1: हजारीबाग खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस वर्ष इसमें क्या क्या विशेष होने वाला है 27 से 29 अगस्त को?
0: सबसे पहले श्रोताओं को जिला प्रशासन की ओर से बताना चाह रहे हैं, आदरणीय उपायुक्त महोदय हेमंत सती सर के दिशा निर्देश में उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग में एक प्रमंडल स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें 7 जिला भाग लेंगे। इनमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जाएगा, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, तीरंदाजी हो गया, ताइक्वांडो हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, अन्य खेल भी शामिल इसमें है। और इनमें एक सर के निर्देश में सभी प्रमंडल स्तर के जो भी खिलाड़ी हैं वो आए और एक आपका एक मंच तैयार किया गया है, आप आइए। इसमें सभी खिलाड़ियों को एक मंच दिया जा रहा है ताकि अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपनी प्रतिभा को आप साबित कर सके कि इस मंच के लायक हम हैं, और इसके माध्यम से उनको अलग स्टेज बाय स्टेज उनका स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया या ओलंपिक हो गया, इसमें उनको जाने का एक मौका दिया जा सके।
1: तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है हजारीबाग और आसपास के खिलाड़ियों के लिए। कितने खिलाड़ियों की भाग लेने की संभावना बन रही है?
0: एप्रोक्स अंदाज लगाया जा रहा है यहाँ की लगभग 2 से 3 हजार की संख्या हमको लग रहा है पार्टिसिपेट पर चलेंगे। खेल का महाकुंभ होने जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, 2 स्टेज में किया जा रहा है। एक हो गया अंडर 19 का बच्चा भाग लेंगे और एक अंडर 19 एबव भाग लेंगे।
1: ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्रों की प्रतिभा है सर, वो इस खेल महोत्सव में जुड़ने के लिए जिला प्रशासन से क्या क्या व्यवस्था की जा रही है?
0: प्रशासन और खेल संघ के माध्यम से यहाँ सारी व्यवस्था रहेगी, उसको ठहरने की व्यवस्था दिया जाएगा, खाना जो होता है भोजन आदि का व्यवस्था किया जाएगा, जो आधारभूत संरचना होता है जिससे इक्विपमेंट खेलने के लिए जो उसकी व्यवस्था होती है वो उनको दिया जाएगा खेलने के दौरान
1: जी।
0: बाकी जो खेल होता है उस टाइप से उनको मतलब सारा व्यवस्था दिया जाएगा।
1: 27 से 29 तक तो ये एक महाकुंभ चलने वाला है, और ऐसे में जो युवा खिलाड़ी हैं सर, मैं उनको फोकस करके कहूंगा कि भविष्य में राज्य हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो वो पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक बड़ा मंच होगा, और उसके लिए जिला खेल विभाग की क्या योजनाएं हैं सर?
0: योजना ये है कि कम से कम तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो ताकि बच्चे को अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा उनको। और सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त 2026 को जो मनाया जा रहा है, उसी के अवसर पर जो हमारे मेजर ध्यानचंद उन्हीं को जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है पूरा भारत में, पूरा भारत में उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जा रहा है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये आयोजन भी कराया जा रहा है।
1: दर्शकों और खेल प्रेमियों के लिए आप क्या संदेश देंगे सर?
0: यह संदेश है सभी अभिभावक खिलाड़ियों से, खिलाड़ी प्रेमियों से रिक्वेस्ट मेरा रहेगा प्रशासन की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, खेल की जो मनोरंजन है उसको आप लाभ ले और बच्चों के देखें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अंतर्गत जो भी खिलाड़ी है उसमें क्या प्रतिभा है, आप अपने स्तर से आप देख सकते हैं, उसका एंजॉय कर सकते हैं।
1: तो इसमें कोई शुल्क वगैरह या कोई?
0: नहीं, निःशुल्क है। दूसरे में है कि जो भी प्रतिभागी इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान लाता है उसको कैश अवार्ड भी दिया जाएगा।
1: कौन कौन सहयोग कर रहे हैं और किस तरह का माहौल दिख रहा है सर चलते चलते?
0: जो उपायुक्त महोदय हेमंत सती सर है उनके दिशा निर्देश में एक मीटिंग हुई है, उनमें से सभी जो जितने भी खेल संघ है सभी का सहयोग इसमें है, विशेषकर ओलंपिक का भी इसमें सहयोग है, या ओलंपिक का जो भी ओलंपिक से रजिस्टर है उन लोग का भी ज्यादा सहयोग मिल रहा है इसमें, संघ भी जितने भी है संघ उन लोग भी सहयोग कर रहे हैं। पदाधिकारी में सर सब आ रहे हैं, जितने भी जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय हो गए, उप विकास आयुक्त हो गए, SDO साहब हो गए, इन लोग सभी को रहेंगे सामने।
1: और भी अकादमी यहाँ पर जो पर्सनल रूप से हजारीबाग में चल रहा है जैसे तीरंदाजी का है या कराटे की है, ताइक्वांडो
0: शूटिंग का है, कराटे की है, हाँ लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है,
1: तो उसका वो भी आमंत्रित है।
0: हाँ, सारा को आमंत्रित है।
1: यदि आपको हजारीबाग के खिलाड़ियों के लिए केवल एक संदेश देना होगा जिसे वो जीवन भर याद रखे और 27 से 29 तक लगातार इस खेल को देखने के लिए आए, अपने बच्चों को यहाँ लाए, उनकी प्रतिभा को सबके सामने उजागर करे, उनके लिए क्या संदेश होगा सर जो याद?
0: प्रशासन की ओर से बोलना चाहेंगे कि उन लोग आए और इनको एक यादगार बनाए और सबका सहयोग इसमें दें, आप आए तभी एक महोत्सव के रूप में इसको मना सकते हैं। इसे रिक्वेस्ट है आप लोग आइए, देखिए और पार्टिसिपेट लीजिए।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हम सबके लिए समय निकाला है और खेल प्रेमियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर, जिससे उनका उत्साहवर्धन होगा और निश्चित रूप से वो 27 और 29 के लिए तैयार होंगे।
0: थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग आइए, इसका आनंद ले और एक यादगार बनाइए,
1: इसको यादगार बनाया जाए। तो खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हम सब बिल्कुल तैयार, सर भी है बिल्कुल तैयार। अब हम कजन ग्राउंड के अंदर खेल जो आयोजन होने हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनके जो कोच हैं,

0: एज ग्रुप के अनुसार जैसा कि उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश भी है, तीनों वर्ग हम लोग रखेंगे अंडर 14, 17, 19, और इतना सुंदर तरीका से अगर आयोजन होता है तो खेल का रूप जो है बहुत सुंदर बनेगा।
1: चलिए हम खिलाड़ियों तक 27, 28, 29 की भी घटनाएं एकदम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचाएंगे।
0: चयनित होंगे जो अच्छे खिलाड़ी, बिल्कुल उन लोगों को तो हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग खेलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। लगभग हमको लग रहा है 300 से आसपास में तो निश्चित है कि
1: आपके ताइक्वांडो खिलाड़ी होंगे।
0: हाँ, लगभग हो।
1: उन सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
0: धन्यवाद सर।
1: नमस्कार मैम, खेल निशान से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं नीलम कुमारी, मैं यहाँ पे तिरंदाजी प्रशिक्षक रूप में हूँ। बच्चे मेरे यहाँ दूर दूर से आते हैं, सेकेंड टाइम डेली प्रैक्टिस होता है। डेली प्रैक्टिस होती है।
1: आप कितने दिनों से यहाँ प्रशिक्षण दे रही है बच्चों को?
2: 1.5 साल लगभग हो गया।
1: 1.5 साल लगभग हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि 27 से 29 तक होने वाली है, इसकी क्या तैयारी है मैम? इसमें क्या क्या विशेष आप बच्चों से चाह रही है?
2: चाहेंगे कि बच्चा अच्छा करे, दिन प्रैक्टिस सेशन का अच्छा स्कोर करे, वो मेडल जीते और जो है उनके आगे लक्ष्य में वो जीते।
1: इसमें आप सहायक सिद्ध हो रही है, ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।
2: 3 से अभी 6:30 बजे तक, 6:30 बजे इनकी छुट्टी हो
1: लगातार ये प्रैक्टिस करते रहे।
2: हाँ, अभी हमारे ग्राउंड से 2 बच्चे हैं जो नेशनल खेले हुए हैं।
1: आप अपना नाम बताएं।
3: उमंग कुमार।
1: उमंग कुमार कहाँ से आते हैं?
3: हजारीबाग ओकनी।
1: ओकनी से कितने सालों से सीख रहे हैं?
3: 3 साल।
1: 3 साल हो गया। और ये जो 27 से 29 तक का है, ये खबर मिली महोत्सव यहीं पर होने वाला है?
3: हाँ, ये मिली।
1: इसके लिए क्या तैयारियां करवा रही है सभी?
3: चल रहे, अपना डिस्टेंस चला रहे।
1: तो किस डिस्टेंस से मारने की?
3: 30-20।
1: कितने बड़े चैंपियन है और जरूर आप चैंपियन बने, इसकी शुभकामना हम देते हैं आपको। आपका नाम बताएं।
4: मेरा नाम अतीफ शमशाद है, हजारीबाग पिलावल।
1: पिलावल से आप आते हैं, कितने दिन से सीख रहे हैं यहाँ पर तीरंदाजी?
4: 2 साल।
1: कैसा लगता है यहाँ का माहौल?
4: अच्छा लगता है।
1: कौन से क्लास में है आप, किस स्कूल में बताएं?
4: गॉड ग्रेस में 8 क्लास। 30 मीटर का तैयारी कर रहे हैं।
1: चैंपियन बने और फिर जब हम 29 को मिले फाइनल टाइम पे, तो आपसे बातचीत हो चैंपियन के रूप में। बहुत बहुत शुभकामना आपको।
5: मेरा नाम रितिका रानी।
1: रितिका रानी कब से सीख रही हो ये तीरंदाजी वाला?
5: मेरा 3 साल हो गया।
1: तो आने वाले 27 से 29 तारीख के लिए क्या कहोगे अपनी बहनों को जो तीरंदाजी में अपना नाम कमाना चाहती है? उन सभी खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगी इस महोत्सव से पहले?
5: इस महोत्सव में आइए, देखिए क्या क्या होता है, सीखने को मिलेगा।
1: हम सभी आएंगे और सभी जानेंगे कि किसने क्या निशाना साधा। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका।
5: थैंक यू।
1: खेलेंगे शान से,
6: जीतेंगे शान से।
1: और इस वक्त लॉन टेनिस के कोर्ट में मौजूद हूँ मैं। प्रैक्टिस लगातार जारी है बच्चों की। क्या तैयारियां चल रही हैं? और स्वागत आपका खेलेंगे शान से के इस अंक में।
7: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी से। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं लॉन टेनिस कोच हूँ और मैं ITF लेवल 1 किया हूँ और मैं 2018 से यहाँ पे नियुक्त किया गया हूँ। अभी मेरे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं। तो तैयारी ऐसा है कि जो हमारा 27, 28, 29 को जो बहुत एक खेल महोत्सव बोलिए, हमारे खेल दिवस के शुभ मौके पे, ये हमारे, मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा हमारे हजारीबाग उपायुक्त महोदय श्री हेमंत सती जी से, जो इतना अच्छा सोच रखते हैं, क्योंकि वो खुद स्पोर्टिव है। तो जो स्पोर्टिव होता है वही ऐसे सोच रखते हैं, क्योंकि
1: तो विशेष प्रशिक्षण शुरू हो चुका होगा।
7: मेरी जो प्रशिक्षण बच्चे तो सारे उत्साहित है, क्योंकि इसमें
1: देख रहा हूँ इस वक्त ग्राउंड में,
7: इसमें ऐसा है कि बच्चे इतने उत्सुक है क्योंकि ये मैच मतलब सदियों में एक बार आता है। दूसरा, इसमें सारे प्रेफरेंस मिलते हैं, इसमें बच्चों का आना जाना, रहना, खाना पीना, एंट्री फीस, बॉल्स। उसके बाद मुझे तो ये आश्वासन मिला है कि आपकी जो ग्राउंड की जो क्षति हालत है वो हम सुधार के देंगे, तभी मैच कराएंगे।
1: क्या बात,
7: क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है।
1: महोत्सव आने से पहले इसका शुभ संकेत और शुभ आरंभ होना शुरू हो गया।
7: शुरू हो चुका है।
1: संदेश क्या देंगे अभिभावकों को,
7: बच्चों को? सारे बच्चे को यही बोलेंगे कि बच्चों आप लोग खेलो, जीतने के लिए नहीं खेलो। जीतने के लिए खेलोगे तो आप डर के खेलोगे। आपको अपना गुड परफॉर्मेंस देना है। आप हारो मगर अच्छा परफॉर्मेंस दो। लोग बोले कि नहीं बेटा आप हारे तो बहुत अच्छा खेले, क्योंकि देखिए लोग जीतने के लिए खेलते वही बच्चे हारते हैं स्टार्टिंग में। आप जीतने के लिए खेलो ही नहीं, आप सोचो कि मुझे जीतना ही नहीं है, मुझे हारना है, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दो।
1: कितने दिन का प्रैक्टिस हो?
7: मेरा जो प्रैक्टिस है वो इवनिंग 4 o'clock से लेकर रात 9, 9:30, 10 बजे तक मेरी ट्रेनिंग होती है। मेरे पास 4-5 बैचेस हैं, 40 बच्चे हैं, जिसमें जूनियर्स मेरे 4 साल से लेकर बच्चे 50 साल तक बुजुर्ग भी मेरे पास खेलते हैं।
1: तो चलते चलते अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे?
7: मैं यही बोलना चाहूंगा कि जोर शोर से अपने अपने बच्चे को लाइए, जोड़िए स्पोर्ट्स से। मैं नहीं बोलता हूँ टेनिस से ही, हर स्पोर्ट्स से जोड़िए। जो बच्चे जिस गेम्स के लिए इच्छुक है उस गेम्स के लिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करे और थोड़ी भी पढ़ाई और मोबाइल और टीवी से दूर रख के थोड़ा, क्योंकि देखिए खेलेंगे शान से तो जिएंगे शान
1: से।
7: थैंक यू आपका
1: बहुत धन्यवाद। टाइट शेड्यूल आपका, बातचीत किया आपने, बहुत बहुत
7: थैंक यू।
1: शशि कब से खेल रहे हो? शशि
8: कब? 1 साल हो गया।
1: 1 साल टेनिस ही क्यों खेला बेटा? और भी तो खेलते, कैसे पसंद किया कि टेनिस खेलना है?
8: सर और टेनिस दोनों ही पसंद है।
1: सर और टेनिस दोनों पसंद हो गए और आपने टेनिस को चुन लिया?
8: बहुत अच्छी चल रही है अभी तो मैं

0: सर्विस कर रहा हूँ।
1: सर कैसा सिखा रहे हैं?
0: अच्छे से।
2: मेरा नाम अर्नव सिंह हानिया।
3: ये टेनिस में किस तरह से आए, कब आए?
2: मैं टेनिस में लगभग 6 महीना पहले आया हूँ और मुझे ये गेम बहुत दिलचस्प लगा।
3: सिंघानिया जी को क्या चाहिए अभी 27 से 29 तक? मैं बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है इसी प्रांगण में।
2: मैं अपना बेस्ट दूंगा।
3: बेस्ट देंगे?
2: ये मत सोचिए कि आपको जीतना है।
3: क्या बात,
2: बेस्ट दीजिए।
3: वही आपके गुरु ने भी कहा है और उसी को आप लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आप और आपकी टीम जीते। खेले निशान से लाखों करोड़ों श्रोता जो न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं इस समय, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। खेलेंगे शाम से,
0: जीतेंगे शाम से।
4: आगामी खेल महोत्सव से जुड़ी खास जानकारियां हम सभी ले रहे थे सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से। और अब आगे हमारा अगला सेगमेंट, हर जीत की कहानी। रफीक
5: साहब ने कैसे सोचा कि टेनिस ही करना है? घर परिवार में इसका क्या रिस्पांस? हर जीत की कहानी यही जानना चाहती है आपसे।
6: मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रोजर फेडरर, जो वर्ल्ड नंबर वन थे,
5: रोजर फेडरर
6: जो लेजेंड बोलते हैं लॉन टेनिस के। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, भगत भी हूँ और मेरे पूरा फैमिली सारे भगत है, मगर किन्हीं को स्कोप नहीं मिला। मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, बहुत मेहनत संघर्ष किया हूँ। मुझे याद है मैं पहले, सबसे पहले मैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और ना मेरे पास रैकेट थी, मगर मेरे अंदर दीवानगी इतना थी कि मैं कुछ भी कर सकता था टेनिस के लिए। मैंने टेनिस के लिए टेनिस ग्राउंड गया, हाथ जोड़ा, लोगों से मिला, फिर वहां पे जाकर के ऐसे बॉल उठाना, ग्राउंड साफ करना, मेंटेनेंस करना, देखना, ठीक है, गाड़ी धोना, लोगों को पानी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता पानी ला करके देना, मतलब ये सर्विंग जैसे होटल में काम था। धीरे धीरे फिर एक टूटा हुआ रैकेट मुझे मिला, वो टूटी हुई रैकेट को मैंने एल्युमिनियम के जस्ट स्टिक से मैंने जोड़ करके उससे फिर वॉल दीवार में, क्योंकि मेरे साथ खेलने वाला कोई था नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर खेलते थे तो मैं दीवार में अपना सुबह खेलते रहता था। पैशन हो गया, खेलते खेलते खेलते कितने हैबिट हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना कंसिस्टेंसी आ गई। एक दिन आईएएस ऑफिसर मुझे देख लिया दीवार में मारते हुए, उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटे आप बहुत अच्छा मार रहे हो, कहां से सीखे? बोले सर मैंने तो कहीं से नहीं सीखा, मैं तो बस आपको देखता हूं। बोला बेटा मेरे साथ खेलो। उनके साथ खेला, उनको बहुत अच्छा लगा। बोला बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 1 घंटे में थकता था, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं 15 मिनट में थक जा रहा हूं। ये भी क्योंकि टेनिस वर्ल्ड का सेकेंड रिच गेम है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस फील्ड में भी आ पाऊंगा। जब मैंने अपना 7 साल गुजारा टेनिस में तो मेरा कहीं स्कोप नहीं दिख रहा था मुझे, तो मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप में टैलेंट है, आप निकलो। तो कहां निकलें, किस जगह निकलें? मैं तो कुएं का वो मेंढक था जो कुएं के अंदर था और मुझे वही दुनिया, मुझे लगता था कि यही दुनिया है, मगर जब मेंढक जब किसी के थ्रू बाहर आता है तो पता चलता दुनिया इतनी बड़ी है। मैं किसी से कर्जा लिया, सामान भी दूसरे से लिया, मेरे पास कुछ नहीं था। 500 रुपया एक ऑफिसर मुझे दिए और एक रैकेट मेरे बड़े भाई साहब को एक फॉरेनर के द्वारा मिला था, सस्ता 800 का रैकेट मिला था। मैं निकल गया, मैं जमशेदपुर चला गया, टाटा जमशेदपुर। वहां गया, 2-3 दिन इधर उधर हाथ पैर मारा, हाथ जोड़ा कि सर मुझे टेनिस में डाल दो। उन्होंने बोला बेटा टेनिस तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि टेनिस बहुत महंगा गेम है, इसमें महंगा जूता आता है, महंगा रैकेट आता है, स्ट्रिंग आता है, एंट्री फीस आता है, आना जाने का खर्चा रहता है, ट्रेनिंग का फीस रहता है। मैं बोला कि सर जो हो सकता है मैं करूंगा, मुझे जो भी काम होगा मैं करूंगा। मैं 2 दिन हाथ जोड़ा, फिर भी मुझे भगा दिया गया। 3 दिन मैं गया, जाकर के सीधा खड़ा हो गया स्ट्रिक्टली, सर मुझे टेनिस खेलना तो खेलना चाहिए नहीं, मुझे उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़े। तो फिर वो देखा कि नहीं लड़का तो बहुत रुझारू है इस टेनिस के प्रति, पैसा तो नहीं है मगर रुझारू है। फाइनली उन्होंने बताया कि एक काम कीजिए, आप मेरे पास टेनिस खेलिए, मेरा भी काम होगा और आपका भी हम काम करेंगे, मगर देखेंगे आप में अगर इंटरेस्ट होगा तो हम वो इंटरेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं होटल में प्लेट भी दिया हूँ, साइकिल का पंचर भी बनाया हूँ, ब्रेड भी बेचा हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं हूँ जो नहीं किया हूँ।
3: आज हरजीत की कहानी में आपसे मिलकर के बहुत ही खुशी हो रही है। फिर कभी हम और भी बहुत सारी आपके उस जद्दोजहद को, उस जुनून को जानेंगे, क्योंकि एक जो कोच है और अब इतने बड़े बड़े ओहदे पर है और आगे भी जाएंगे।
6: मैं यही बोलूंगा मैं हजारीबाग में आया हूँ किसी मकसद से, मुझे यहाँ से बच्चे नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल से भी ग्रैंड स्लैम होती है, मुझे वहाँ बच्चे को लेके जाना है, बहुत हाई परफॉर्मेंस लेवल पे
3: जिस तरह से आते हैं और जिस तरह से टेनिस को प्यार किया और जिस तरह से टेनिस के लिए जद्दोजहद झेली, बाहर धक्का खाते हुए भी, कई तरह के काम करते हुए भी टेनिस को नहीं छोड़ा, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे चैंपियन हुए बिना कैसे रहे।
6: एक शॉर्ट मैसेज देना चाहते हैं हर बच्चे को कि कोई भी लाइन बुरा नहीं होता है, कोई भी एक लाइन में भी आप चलोगे तो आप सीधा मंजिल को पाओगे, अगर 2 लाइन में आप चले गए या 3 लाइन में चले गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए 1 लाइन में रहोगे तो वो आप सक्सेसफुल के एरिया वो जुगाड़ बन जाएगा।
3: निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि आज का जो ये सेगमेंट है हर जीत की कहानी, इसमें आज आपसे मुलाकात करके हम सबको बहुत कुछ शिक्षा मिली है और बहुत कुछ उत्साह भी मिल रहा है।
6: थैंक यू वेरी मच।
4: और अब हमारा अगला सेगमेंट, आज का खेल मंत्र। खिलाड़ियों, अभ्यास कभी छुट्टी नहीं मांगता, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा जरूर खेलिए। हारने पर बहाना नहीं, सीख खोजिए।

0: और अब हमारे सीनियर खिलाड़ियों के लिए नया सेगमेंट सुनो खिलाड़ियों। अभ्यास के दौरान अपनी कमजोरियों से मत भागिए, उन्हें ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जीतने के बाद विनम्र रहना और हारने के बाद धैर्य रखना, यही असली खिलाड़ी की पहचान है। जब लोग आपकी उपलब्धियों से ज्यादा आपके संस्कारों की चर्चा करें, तब समझिए कि आपने खेल को सही मायने में जिया। और अब हमारा अगला सेगमेंट खेल टिप्स। हर अभ्यास सत्र के बाद 2 मिनट यह सोचिए कि आज आपने क्या नया सीखा। प्रतियोगिता से पहले नई तकनीक आजमाने के बजाय उसी पर भरोसा करें जिसकी आपने अच्छी तरह से तैयारी की है। अब समय है खेल जगत की ताजा हलचलों पर नजर डालने का। पेश है आज के खेल अपडेट्स। मीराबाई चानू ने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2026 का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर नया गेम्स रिकॉर्ड बना दिया और लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद दिलीप महादू गावित ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुष 100 मीटर स्वर्ण पदक जीतकर एक नया गेम रिकॉर्ड तैयार कर दिया। मोहम्मद बासिल ने पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक हासिल किया। पुरुष लंबी कूद में रजत पदक हासिल करने वाले रहे मुरली श्रीशंकर। पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया गुलवीर सिंह ने। इस स्पर्धा में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक प्राप्त हुआ है हमें। भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम 10 पदक पक्के कर लिए हैं, इसलिए आने वाले दिनों में भारत की पदक संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है और कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। आज भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो मुकाबले पर रहेंगी, जहां उनसे स्वर्ण पदक की बड़ी उम्मीद है। और क्रिकेट की दुनिया से ये खबर आ रही है, टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया। जी हां, भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखते ही देखते आज का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया, लेकिन याद रखिए खिलाड़ियों, मैदान कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज निकलेगा वही कल मंजिल पाएगा। अगर आप खेलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और गिरकर फिर उठते रहेंगे, तो जीत एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, मंजिल उन्हीं के कदम चूमती है जो रास्तों से नहीं इरादों से सफर तय करते हैं। मैं माणिक चक्रवर्ती आपसे अब आज के इस अंक से अनुमति चाहता हूँ। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और खेलों के नए रंगों के साथ। तब तक मुस्कुराइए, फिट रहिए, खेलते रहिए और सबसे बढ़कर खेलिए शान से, और कहिए दिल से, खेलेंगे शान से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन थे माणिक चक्रवर्ती के, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

वंश फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है,

ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया।

और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित

0: करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के सीआईपी मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

इस गीत को सुनना चाहा था जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से आप हैं मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीज फातिमा, यास्मीन फातिमा और शहनाज फातिमा। औरंगाबाद से इसी गीत को सुनना चाहा था राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राशि राजेश और राजदीप राजेश। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है चरस और इस गीत को सुनना चाहा है साहिबगंज झारखंड से शेखर पासवान, सुजाता पासवान, दीपक पासवान और शंभुनाथ। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव ढलाई केला पोस्ट पदमपुर जिला सरायकेला खरसावां से लक्ष्मण सोय, गीता सोय, सरिता सोय और सिनी सोय। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, शोक शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा।

अगला फरमाइशी खत है पंच मंदिर रोड से। आप हैं कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन, फिरोज अहमद और शमा परवीन आरजू।

बड़ोबा धनबाद झारखंड से हैं बेगम फरीदा रफीक, और चेपाकला बड़का गांव से हैं श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सव्या ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जीतेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म अनजाना अनजानी का ये गीत।

फिर तेरी कहानी याद आई। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुण और करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भगत वर्मा।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे News@9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में

0: क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
0: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था। बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंग पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmin Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
0: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
6: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
0: Exploration ke liye aur uske baad mein production ke liye बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीजमिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीजमिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है, और वंस द एक्सप्लोरेशन

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और अदाएं कुछ ऐसी कि बिजलियां गिरा दें।

0: रविदास का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अश्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवों का कारोबार था उनका। जिंदगी की राहों में आगे चलकर यूं हुआ कि मुमताज की माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए। ये तब की बात है जब मुमताज महज 16 साल की थीं। जाहिर है कि जिंदगी कठिन राहों पर चल पड़ी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करती रहीं। चूंकि घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए माँ ने सोचा कि क्यों ना बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस तरह से जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो मुमताज की माँ ने अपनी दोनों बेटियों यानी मुमताज और मलिका को फिल्मों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 11 साल की छोटी उम्र में मुमताज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। पहली फिल्म थी सन 1958 में आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के हीरो थे तलत महमूद और हीरोइन थी नूतन।
1: सच बता

0: सच बता तू मुझ पे फिदा।
1: इसके बाद बतौर बाल कलाकार मुमताज नजर आईं यास्मीन और लाजवंती जैसी फिल्मों में।

और इस तरह से छोटे मोटे रोल उन्हें भी मिलते रहे और उनकी बहन को भी मिलते रहे। जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो 1960 के आसपास उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था स्त्री। इसके बाद आई वल्लाह क्या बात है और 1963 में आई सेहरा। ये वो दौर है जब मुमताज न बच्ची थी और ना

इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रलहन एक फिल्म बना रहे थे, गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म चल निकली, जाहिर है कि मुमताज की एक खास पहचान बन गई। 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो, इसमें भी मुमताज की एक छोटी सी भूमिका।

फौलाद के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। चूंकि दारा सिंह की फिल्में स्टंट फिल्में होती थीं, बहुत सारी नामचीन हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। सबकी अपनी अपनी वजहें थीं। पर इन्हीं दिनों में मुमताज अपनी बहन मल्लिका के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर गईं। दारा सिंह ने मुमताज को देखा और उन्हें लगा कि मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन मिल गई है। मुमताज को भी एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। तो बस यहां से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का एक दिलचस्प इतिहास। हीरो दारा सिंह, हीरोइन

अगले 6 साल तक एक के बाद एक स्टंट फिल्में आती चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों की कुल तादाद बनी 16। जी हाँ, मुमताज और दारा सिंह ने 16 फिल्मों में काम किया है। वीर भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन और किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर आजम, रुस्तम ए हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों में काम किया मुमताज और दारा सिंह ने।

इस दौरान मुमताज ने कुछ और सहायक भूमिकाएं की, जैसे फिल्म राम और श्याम में। ये फिल्म 1967 में आई थी। आदमी और इंसान 1969 में आई। इन दोनों फिल्मों के लिए मुमताज को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

यहाँ तक आते आते मुमताज की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि राज खोसला अपनी एक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उन्हें अचानक नजर आई मुमताज। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया। ये फिल्म थी दो

दो रास्ते ने न केवल राजेश खन्ना को एक जोरदार पहचान दी बल्कि मुमताज भी बतौर नायिका छा गई लोगों के दिलों पर।

बंधन। मुमताज का करियर अब चढ़ाव पर था। उनकी खूबसूरती, उनके अभिनय, उनकी अदाओं की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानी जिंदगी में जद्दोजहद के दिन अब कम हो रहे थे और कामयाबी उनकी राहों को चूम रही थी। दो रास्ते के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी जोरदार तरीके से जम गई। एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने अब आपकी नजर। सन 1970 सच्चा झूठ।

सन 1969 में दो रास्ते के अलावा एक और फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ मुमताज की। ये थी नरेंद्र बेदी की फिल्म।

0: सन 1971 दुश्मन।
1: मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा।
2: क्या देखा, क्या देखा?
1: एक दिन

न केवल ये फिल्में हिट हो रही थीं, बल्कि इनके गाने लोगों की जबान पर सज रहे थे। दिलचस्प ये था कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लेकर फिल्में लिखी जा रही थीं। निर्देशकों की लाइन लगती थी इन्हें बतौर हीरो हीरोइन साइन करने के लिए। इसी दौरान मुमताज ने एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की 1970 में आई खिलौना।

ऐसा नहीं था कि मुमताज के हाथ ये कामयाबी एकदम अचानक आ गई हो। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया था। आपको बताएं कि एक दौर ऐसा था जब बहुत सारे नामी नायकों ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लड़की तो बी ग्रेड की हीरोइन है। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। 70 के दशक में शशि कपूर एक कामयाब अभिनेता थे। 1970 में फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा, जिसमें बतौर नायक उन्हें साइन किया जा रहा था और बतौर नायिका मुमताज को, पर शशि कपूर ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और बाद में ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी तो हिट हो ही रही थी, लेकिन आगे चलकर शशि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में उन्होंने ये सिफारिश की कि उनकी हीरोइन के तौर पर मुमताज को साइन किया जाए और यहां शशि कपूर और मुमताज एक साथ नजर आए।

0: ले जाऊं।
1: उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देव आनंद के साथ उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, और देव के साथ वो तेरे मेरे सपने में भी नजर आई।

मुमताज शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रही थी। उन्हें बहुत शानदार तरीके से मॉडर्न डांस करना था और वो भी साड़ी पहनकर। पारंपरिक साड़ी से काम नहीं चल रहा था। उस जमाने की जानी मानी फैशन डिजाइनर भानु अथैया ने आइडिया लगाया और उन्होंने उस जमाने में पहली बार स्टिच साड़ी यानी सिली हुई साड़ी तैयार की। इसे पहनकर मुमताज ने इस गाने में नृत्य किया। न केवल मुमताज छा गई बल्कि मुमताज साड़ी भी छा गई। जी हाँ, स्टिच साड़ी आगे चलकर मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर हुई। एक कामयाब हीरोइन वो होती है जो अपने फैशन स्टेटमेंट्स जनता तक पहुंचाए। मुमताज ने ये बखूबी किया।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो।
1: फिरोज खान के साथ मुमताज नजर आई फिल्म मीला में, इसके बाद आई अपराध और फिर आई नागिन।

मुमताज के करियर का विश्लेषण करें तो उन्होंने तकरीबन 100 फिल्में तो की होंगी, जिनमें से 60 फिल्में हिट या सुपरहिट रहीं। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया, ये फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना।

विकास का करियर शिखर पर था। एक से बढ़कर एक रोल उन्हें ऑफर किए जा रहे थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि फिल्मों के ढेर लगे हुए थे। साल 1974 में एक दिन अचानक खबर आती है कि मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली है और फिल्मों को अलविदा कह दिया है। यकीन मानिए, न जाने कितने दिल टूटे, न जाने कितने लोग उदास हो गए। एक हीरोइन का शादी करके घर बसाना उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत तो है, लेकिन जब लोग ये मानते हैं कि आगे फिल्में नहीं आएंगी तो उदास भी हो जाते हैं। लोगों को यूं लगा मानो कारोबारी मयूर वाधवानी ने उनकी प्रिय हीरोइन को उनसे चुरा लिया है, उनसे जुदा कर दिया है।

मुमताज शादी रचा के फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं, पर कुछ फिल्में थीं जो उनकी शादी के बाद आईं, जैसे प्रेम कहानी। सन 1977 में उनकी आखिरी फिल्म आई आईना। इसके बाद मुमताज बरसों बरस तक फिल्मी परिदृश्य से गायब रहीं। फिर 13 बरस बाद यानी 1990 में मुमताज नजर आईं पहलाज नेलानी की फिल्म आंधिया में। आपको बता दें कि मुमताज के परिवार में उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के साथ हुई है। साल 2022 में ये खबर आई कि मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उन्होंने इस बीमारी को पूरे साहस के साथ पछाड़ा। आज मुमताज फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपने चाहने वालों से मुखातिब होती हैं, जब वो पत्रकारों को इंटरव्यूज देती हैं या किसी टेलीविजन शो में नजर आती हैं। आज भी दर्शकों का मन उन्हें देखकर झूम उठता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मुमताज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति तेजश्री काबली। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

दोस्तों, 31 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए भावनाओं से जुड़ा दिन है। इसी दिन साल 1980 में सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी ने दुनिया को अलविदा कहा था। हालांकि उनकी आवाज़ आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता

दोस्तों, चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहारे मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफी साहब जैसा फनकार ना कभी हुआ और ना कभी होगा।

रफ़ी साहब ना सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वे इंसान बड़े थे या कलाकार।

दोस्तों, रफ़ी साहब ने उदासी और दर्द भरे गीतों के साथ साथ हास्य और प्रेरणादायक गीतों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

0: दोस्तों रफ़ी साहब बहुत कम बोलने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। इन्होंने देशभक्ति गीत के साथ साथ विदाई गीत भी बखूबी निभाए हैं।
1: सुनने

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से।

दोस्तों, कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम के कुछ गीत। ये फिल्म 4 जून 1999 को रिलीज प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म है और इस फिल्म के मुख्य कलाकार में हैं प्रिया गिल, संजय कपूर, सुष्मिता सेन, जॉनी लीवर और महनीस बहल। इस फिल्म के निर्माता हैं बॉनी कपूर और निर्देशक हैं आर्थियन। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के कुछ गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। और आज की फिल्म है सिर्फ तुम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूर दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने

0: Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Asmita Day and Harsh Singh on their gold medal victories. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। यही संपन्न होता है हमारा आज का प्रसारण। प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।